0: 印度特里广播电台，
1: 印度特里广播电台，听众朋友们，请收听西郭马尔、西亚马探亲的三朵。

인도대리 광부电台 听众朋友们 现在我们播送 苏密特拉 고하 唱的 印度古典音乐 请收听

印度特里广播电台，听众朋友们，这次普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。

अपना नाम एक तनु बताने वाले कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु का विश्वास जीतने के लिए उसे तप की महिमा बताई, जिसके प्रताप से ब्रह्मा जगत की सृष्टि करते हैं और विष्णु उसका पालन करते हैं। कर्म धर्म की कथाएं कहकर वो वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। ये सुनकर जब राजा प्रताप भानु पूर्ण रूप से उसके प्रभाव में आ गया और उसे अपना नाम बताने को हुआ, तो कपटी मुनि एक तनु ने कहा, हे राजन, मैं तुमको जानता हूँ। अभी तक अपने विषय में तुम्हारा कुछ न बताना मुझे अच्छा लगा। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं बताते। तुम

महाराज सत्यकेतु के पुत्र प्रताप भानु हो। तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, साधु संतों में निष्ठा और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति ममता जगी है। अतः तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। राजा प्रताप भानु ने मुनि को प्रसन्न जानकर अपनी ओर से ये दुर्लभ वर मांगा कि उसके शरीर को वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख नहीं व्यापे, उसे युद्ध में कोई नहीं जीत सके और वो इस पृथ्वी पर 100 कल्प तक निष्कंटक राज्य करता रहे। तपस्वी ने कहा, ऐसा ही होगा। केवल ब्राह्मण कुल छोड़कर काम भी तुम्हारे सामने झुकेगा।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस के बालकांड का भाग 62। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमे भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहाँ भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
5: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग की

0: माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख की। पश्चिम बंगाल लगभग 2200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताज़ा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
2: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताज़ा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेस्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट आपका कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला हो। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ कुर्मी।
1: जी जी, धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
3: अमेरिका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
1: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नेनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी

0: लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
1: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of

0: today along with developments in US-Iran conflict. Hindustan Times writes, Rome-Delhi dial-up ties during Modi's Italy visit. The paper also carries a picture of Prime Minister Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni at the Colosseum and a screen grab of the video widely circulated on social media where PM Meloni is thanking PM Modi for presenting her a bag of toffees, Melody, a play on their names. The video has been viewed over 11 million times. The Pioneer writes, PM Modi's Melody gift to his Italian counterpart sends internet into a frenzy. The Asian Age writes, after talks with Putin, Xi calls for immediate end to West Asia war. Hindustan Times headlines, talks in final lap strikes if no deal, says Trump. Iran says conflict will expand beyond region if US resumes attacks. Financial Express headlines, RBI lines up $5 billion swap to aid liquidity. In the growing market of cosmetics, Central Drug Standard Control Organization has issued an advisory saying cosmetics can only be rubbed, sprayed or sprinkled on body. The newspaper headlines, No Cosmetic Job with Jabs, warns drug regulator. The Indian Express in an exclusive writes, Working in my own grave, how workers are training robots that may replace them. The news item writes about workers in factories who are asked to wear smart glasses throughout their day. The exercise reflects a growing global push by AI and robotics companies to gather what's called egocentric data, first-person recordings of human activity that can teach machines how people perform physical tasks. And finally, The Economic Times writes, Google rejigs iconic search box for AI era, adding Google is redesigning its iconic search box and adding new artificial intelligence coding tools in its first step to expand influence in the age of AI. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his five-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Repolling begins in Falter Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पांच मुल्कों के अपने सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल कर लिया है। भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान मुजाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। मरकजी सरकार ने नीट यूजी का इम्तिहान दोबारा होने से कबल अफवाहों और पेपर लीक होने के फर्जी दावों से निमटने के लिए बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को हिदायत जारी की हैं। मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हल्के में दोबारा पोलिंग हो रही है। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए जमीन बीएसएफ को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराकर प्लेऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली का अपना दौरा कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। इससे कबल कल भारत और इटली ने अपने ताल्लुकात को खसूसी कलीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने का ऐलान किया, जो बाहमी ताल्लुकात में एक अहम कदम है। दोनों मुल्कों ने मुख्तलिफ शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। इनमें ज़राअत, अहम मादनियात, आयुर्वेद, साइंस, टेक्नोलॉजी और भारत से भारतीय नर्सों के इटली जाने में सहूलत पैदा करना शामिल हैं। दोनों मुल्कों ने टैक्स जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने की रोकथाम से मुतालिक मुफाहिमत नामों पर भी दस्तखत किए। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुश्तरका अखबारी बयान में कहा कि इटली दुनिया भर में डिजाइन और दुरुस्तगी के लिए जाना जाता है, जबकि भारत की पहचान अपने हुनर, सलाहियत और कम खर्च इख्तिरा के एक पावर हाउस

0: की है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इटली डिजाइन तैयार करने और दुनिया के लिए मुहैया कराने के उसूल पर आगे कदम बढ़ाएंगे। वजीर आजम ने कहा कि भारत और इटली के दरमियान दिफाई सनती खाके के तहत साजो सामान मिलकर तैयार करने की राह हमवार हुई है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कामयाब दौरा भारत के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और सकाफती ताउन को मजबूत करने की उनकी जारी कोशिशों का हिस्सा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी का यह इटली का पहला दोतरफा और मजमूई तौर पर तीसरा दौरा था। उनके इस दौरे के दौरान मुतअद्दिद अहम प्रोग्राम और सरगर्मियाँ अंजाम पाईं। उन्होंने इटली के सदर सर्जियो मटेरेला से मुलाकात की। उन्होंने वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ वफद की सतह की बातचीत की, जिसमें भारत और इटली के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई। खुराक और ज़रात की तंजीम के उनके दौरे का मकसद कसीर जहती और आलमी सतह पर खुराक की यकीनी फराहमी के भारत के अज़्म को मुस्तहकम करना था, जहाँ उन्हें अहम UN एग्रीकोला मेडल से नवाजा गया। दोनों फरीकों ने 2027 के लिए सकाफत और सियाहत के इटली भारत साल के आगाज़ का भी फैसला किया। उन्होंने पुरजोश भारतीय और इतालवी फनकारों से भी मुलाकात की, जिन्होंने रोम आमद पर उनका इस्तकबाल किया। रोम से सुपर्णा भाटिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: भारत और इटली दो कदीम तहजीबों के दरमियान सकाफती तबादलों को फ़रोग देने और मुज़ाकरात को मुस्तहकम बनाने की खातिर साल 2027 को सकाफत और सियाहत के साल के तौर पर मनाएंगे। इटली की वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी समझ बूझ को बढ़ावा देने और सकाफती सिफारतकारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुल्कों के दरमियान मजबूत ताल्लुकात सिर्फ सियासी और इक्तसादी राबतों के जाविये से ही नहीं देखे जाते, बल्कि अवाम और मुआशरों के दरमियान रिश्तों से भी इनकी अक्कासी होती है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कल गूगल, मेटा और टेलीग्राम समेत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के नुमाइंदों के साथ मीटिंग की और मुकाबला जाति इम्तिहानात से मुतालिक गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात, खासतौर पर टेलीग्राम चैनल्स और नामालूम ऑनलाइन ग्रुपों के जरिए गलत जानकारी फैलाए जाने के वाकयात बढ़ने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। 21 जून को दोबारा होने वाले नीट UG इम्तिहान से कबल ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। हुकाम ने कहा है कि अहम इम्तिहानात से पहले इस तरह के कई चैनल बहुत ज़्यादा सरगर्म हो जाते हैं और पेपर लीक होने के फर्जी दावे करने लगते हैं, जिससे तलबा और वालिदैन में गैर ज़रूरी तौर पर घबराहट, फिक्रमंदी और इबहाम की कैफियत पैदा होती है। मगरबी बंगाल में जनूबी 24 परगना ज़िले के फाल्टा असेंबली हलके में आज दोबारा पोलिंग हो रही है। वोटिंग सुबह 7 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबी कमीशन ने वहां 29 अप्रैल की वोटिंग को रद्द कर दिया था और पूरे फाल्टा असेंबली हलके में दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया था, क्योंकि वहां राय दहिंदकान को डराने धमकाने, पोलिंग मराकज में गैर मजाज अफराद की मौजूदगी और वोटिंग मशीनों के साथ मुमकिना छेड़छाड़ समेत बेजाबतगियों की कई इत्तलात मौसूल हुई थी। 2 आज़ाद उम्मीदवारों समेत 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने ऐलान किया है कि वो ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। अलबत्ता बैलेट पर उनका नाम मौजूद है, क्योंकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही गुजर चुकी है। इस चुनाव में दिबांशु पांडा BJP के उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने अब्दुल रज्जाक को मैदान में उतारा है। CPIM की तरफ से शंभुनाथ कुर्मी चुनाव लड़ रहे हैं। मगरबी बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सरहद पर खारदार तार लगाने के लिए ज़मीन BSF को मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया है। कल नाबन्ना में रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने BSF अहदेदारों की मौजूदगी में बाज़ाब्ता तौर पर इस अमल का आगाज़ किया। मजीद तफसील हमारे नामा निकार से।
3: रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने साबिका सरकार पर ताऊन न करके सरहदी सिक्योरिटी में रखना डालने का इल्ज़ाम आयद किया। انہوں نے زور دے کر کہا کہ سرحد پر باڑ لگانا ملک اور ریاست کی سیکیورٹی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔

0: उन्होंने इस तनाजुर में दरअंदाजी, स्मगलिंग, जाली करेंसी, जबरन मजहब बदलने और गैर कानूनी बांग्लादेशियों के आने से वाबस्ता जराइम का हवाला दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 4000 किलोमीटर तवील सरहद में से लगभग 2200 किलोमीटर का सरहद का इलाका मगरबी बंगाल से मुत्तसिल है। तकरीबन 1600 किलोमीटर के इलाके पर पहले ही बाड़ लगाई जा चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर के इलाके में कोई बाड़ नहीं है। कल जो 27 किलोमीटर अराजी हवाले की गई है, उसमें 18 किलोमीटर खारदार तार लगाने के लिए और 9 किलोमीटर बीएसएफ की जांच चौकियों और बुनियादी ढांचे के बंदोबस्त के लिए है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि मजीद अराजी जल्द ही मुंतकिल की जाएगी। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दाग़दार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाज़ाराई में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में सलामती काउंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मोड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सितम जरीफी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दाग़दार रिकॉर्ड रहा है, उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो बिल्कुल भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश पर्वतानेनी ने यह रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि वो भारत में अपने साझेदारों के साथ अमरीका के क़याम को 250 साल मुकम्मल होने का जश्न मनाने के मुंतजर हैं। अपने दौरे से कबल एक वीडियो पैगाम में जनाब रूबियो ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी और अमरीका दुनिया की सबसे कदीम जमहूरियत है, लिहाजा अमरीका इसे मिलकर मनाने का मुतमन्नी है। भारत में अमरीका के सिफारतखाने ने भी मजकूरा वीडियो शेयर किया है। अमरीका 4 जुलाई को आज़ादी के ऐलानिये पर दस्तखत किए जाने के 250 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। जनाब रूबियो इस महीने की 23 तारीख से भारत के 4 दिन के दौरे पर रहेंगे। ये उनका भारत का पहला दौरा होगा। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्तोदुलिदिस कल शाम भारत के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर पहुंचे। उनके हमराह एक आला सतही वफ्द भी है। महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा और वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई हवाई अड्डे पर सदर क्रिस्तोदुलिदिस का इस्तकबाल किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खारिजी उमूर की वजारत के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सदर क्रिस्तोदुलिदिस का ये दौरा भारत कुब्रुस शराकतदारी की बढ़ती हुई रफ्तार को उजागर करता है और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अकदार और मजबूत अवाम से अवाम के दरमियान रवाबित पर मबनी हैं। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय आज अपनी काबीना में तौसी करेंगे। कांग्रेस कानून साज पार्टी के रहनुमा राजेश कुमार और मेलूर से रुकने असेंबली पी विश्वनाथन को काबीना में शामिल किया जाएगा। साल 1967 के बाद ये पहली बार है जब कांग्रेस सरकार रियासती काबीना में शामिल होंगे। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम, मनिकम ठाकुर और दीगर बहुत से रहनुमाओं ने मखलूत हुकूमत कायम करने के वजीर आला विजय के फैसले का खैर मकदम किया है। हलफबरदारी की तकरीब आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में आज भी शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में भी गर्मी का जोर जारी रहने का इम्कान है। आज मुल्क में इंसदादे दहशतगर्दी का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आम लोगों की तकलीफ को उजागर करते हुए और ये दिखाते हुए कि कैसे दहशतगर्दी कौमी मफाद के खिलाफ है, नौजवानों को दहशतगर्दी और तशद्दुद से दूर करना है। इस दिन दहशतगर्दी के खिलाफ हलफ लेने के साथ साथ दीगर सरगर्मियां मुनक्किद की जाती हैं। साल 1999 में आज ही के दिन मुल्क ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को एक दहशतगर्दाना हमले में खो दिया था। آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات ایڈن گارڈنز میں کھیلے گئے مقابلے میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے ممبئی انڈینز کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس جیت کے ساتھ ہی کولکاتہ نائٹ رائیڈرز کی ٹیم کے پلے آف میں کوالیفائی کرنے کی امید برقرار ہے۔ آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان 18 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کا چوتھا اور آخری ہاکی میچ 3-3 گول سے برابری پر ختم ہوا۔ اس سے قبل اسی میدان پر 18 سال تک کی عمر کی خاتون کھلاڑیوں کے چوتھے اور آخری میچ میں بھارت نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو شکست دی تھی۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
2: شکریہ انتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے سبھی اردو اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے 5 ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی کا دورہ کرنے اور وزیر اعظم جیورجیا میلونی سے ملاقات کرنے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ اخبار پرتاب نے وزیر اعظم مودی کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ بھارت اور اٹلی کے درمیان بات چیت صرف رسمی تعلقات تک محدود نہیں، دونوں ممالک نے خصوصی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا۔ اخبار نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ انتظامی فیصلے میں تاخیر لوگوں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرنے کے مترادف۔ اخبارات نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے جنوبی کوریا کے دورے کے دوران دیے گئے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ جنوبی کوریا کے ساتھ اسٹریٹجک شراکت داری اور ہوگی مضبوط۔
1: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 5 ملکوں کے اپنے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی کا اپنا دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے۔ بھارت اور اٹلی دو قدیم تہذیبوں کے درمیان مذاکرات کو مستحکم بنانے کی خاطر سال 2027 کو ثقافت اور سیاحت کے سال کے طور پر منائیں گے۔ مرکزی سرکار نے نیٹ یو جی کا امتحان دوبارہ ہونے سے قبل افواہوں اور پیپر لیک ہونے کے فرضی دعووں سے نمٹنے کے لیے بڑے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہدایات جاری کی ہیں۔ مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے میں دوبارہ پولنگ ہو رہی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر خاردار تار لگانے کے لیے زمین بی ایس ایف کو منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائیڈرز نے ممبئی انڈینز کو 4 وکٹ سے شکست دی۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبر نامہ ختم ہوا۔

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे पंडित प्रभात कुमार का गायन। राग है विलास खानी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे हैं प्रभात कुमार। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। जी हाँ, तबले पर संगत कर रहे हैं श्री प्रदीप सरकार।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में आप सुन रहे थे पंडित प्रभात कुमार से सरोद वादन। राग था विलास खानी तोड़ी। तबले पर संगत कर रहे थे श्री प्रदीप सरकार। स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:15 और ठीक 4 सेकेंड। और अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के संक में आप सभी का स्वागत है।
3: नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र। एक पत्रकार के रूप में बीते 3 दशक से कई मुद्दे पर लोगों से बात करने, उसे विस्तार देने, जनता पाठकों के समक्ष रखने का अवसर मिला है। उसी कड़ी में आज हम पूर्वोत्तर के विकास की बात कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है मेघालय सहित पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचनाओं के विकास पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में आधारभूत संरचना विकास को नई गति मिली है। प्रधानमंत्री ने कई बार अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक संभावनाओं का विशेष उल्लेख किया है। इसी दिशा में अब एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग में आगामी 11 और 12 जून को नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन का आयोजन किया जाएगा। यह समिट पूर्वोत्तर भारत में निवेश, कनेक्टिविटी और आधारभूत संरचना विकास को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण मंच माना जा रहा है। इस समिट के पूर्व नई दिल्ली स्थित मेघालय हाउस में एक कर्टन रेजर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेघालय की तेज आर्थिक प्रगति और भारत की विकास यात्रा में पूर्वोत्तर की बढ़ती भूमिका को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉर्नाड के संगमा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि मेघालय की अर्थव्यवस्था पिछले 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई है, जबकि पूंजी निवेश वर्ष 2018 की तुलना में 4 गुना बढ़ गया है। राज्य ने पिछले 3 से 4 वर्षों से लगातार मजबूत आर्थिक गति बनाए रखी है, जिससे निवेशकों का निवेश विश्वास मेघालय के प्रति बढ़ा है। वर्षों से लगातार मजबूत आर्थिक गति बनाए रखी है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। राज्य सरकार ने मेघालय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत सभी क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के बड़े प्रोत्साहन शुरू किए हैं। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि मेघालय ने देश के छोटे राज्यों में सबसे मजबूत उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक का निर्माण किया है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री श्री संगमा ने कहा कि मेघालय का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क पहले से ही पूरी क्षमता से काम कर रहा है, जबकि आगामी दूसरे सूचना प्रौद्योगिकी पार्क में राष्ट्रीय और वैश्विक कंपनियों ने जबरदस्त रुचि दिखाई है। उन्होंने बताया कि राज्य का पहला आईटी पार्क पूरी तरह भर चुका है, जबकि दूसरे आईटी पार्क को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जगत से शानदार प्रतिक्रिया मिल रही है। युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने के उद्देश्य से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का और विस्तार किया जा रहा है। कोरोना महामारी के बाद लगातार 3 वर्षों तक लगभग 10% वास्तविक GSDP वृद्धि दर्ज करने वाला मेघालय देश का एकमात्र राज्य बन गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2018 के लगभग 29,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2024-25 में करीब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक विकास की मुख्य धारा से अपेक्षाकृत दूर माना जाता रहा है, लेकिन अब यह धारणा तेजी से बदल रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉर्नाड के संगमा का यह बयान इस बदलाव की स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करता है। उनका यह कहना है कि पिछले 3-4 वर्षों में निरंतर आर्थिक विकास ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। केवल एक राजनीतिक दावा नहीं, बल्कि उस नई आर्थिक दिशा का संकेत है जिसमें मेघालय आगे बढ़ रहा है। मेघालय को देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में शामिल करना इस बात का प्रमाण है कि राज्य ने विकास के नए मानक स्थापित करने की कोशिश की है। खास तौर पर राज्य सरकार की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति निजी निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। यह नीति न केवल निवेश को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि रोजगार सृजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण आधार भी। सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि मेघालय अब केवल प्राकृतिक संसाधनों और पर्यटनों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि तकनीक और उद्यमशीलता के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य में मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकसित होना इस बात का संकेत है कि युवा पीढ़ी अब पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर नवाचार की राह पर चल रही है। राज्य का पहला आईटी पार्क पूरी क्षमता के साथ संचालित होना और दूसरे आईटी पार्क की बढ़ती मांग यह दर्शाती है कि मेघालय डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेजी से उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया सपने को साकार कर रहा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती रुचि इस दिशा में राज्य की संभावनाओं को और मजबूत करती है। केंद्र सरकार की भूमिका भी इस परिवर्तन में अहम है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी द्वारा यह आश्वासन कि पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचों और क्षेत्रीय एकीकरण को निरंतर समर्थन मिलता रहेगा राज्य के विकास प्रयासों को नई ऊर्जा देता है। साथ ही मेघालय सरकार को विकास की गति बढ़ाने का श्रेय दिया जाना यह बताता है कि राज्य और केंद्र के बीच समन्वय सकारात्मक परिणाम दे रहा है। 11 और 12 जून को हो रहे आगामी शिखर सम्मेलन में परिवहन, नेटवर्क, शहरी बुनियादी ढांचा, डिजिटल कनेक्टिविटी और निवेश साझेदारी पर फोकस होना इस बात का संकेत है कि पूर्वोत्तर अब केवल रणनीतिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। इस समिट में केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, श्री सर्बानंद सोनोवाल और अन्य कई केंद्रीय मंत्री, पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, निवेशक, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सर्वविदित है कि श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही पूर्वोत्तर क्षेत्र को देश के विकास के केंद्र में रखा है। उनकी सोच स्पष्ट रही है कि जब तक देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र तेज गति से आगे नहीं बढ़ेगा तब तक भारत के समग्र विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वोत्तर को केवल भौगोलिक दृष्टि से नहीं देखा बल्कि इसे भारत की अष्ट लक्ष्मी के रूप में पहचान दी। उन्होंने इस क्षेत्र की अपार संभावनाओं को समझते हुए आधारभूत संरचनाओं के विकास पर विशेष जोर दिया है। केंद्र सरकार एक्ट ईस्ट की नीति पे पहले से अधिक काम कर रही है। पिछले वर्षों में पूर्वोत्तर में सड़क, रेल, हवाई संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। हजारों करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया गया, नए पुलों और सुरंगों का निर्माण हुआ जिससे दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने में बड़ी सफलता मिली है। बोगीबिल ब्रिज जैसे रणनीतिक महत्व के पुलों का निर्माण, विभिन्न राज्यों में नए रेलवे ट्रैक का विस्तार और क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत नए हवाई मार्गों की शुरुआत ने पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलने का काम किया है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीति के तहत डिजिटल इंडिया का लाभ भी पूर्वोत्तर तक तेजी से पहुंचा है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंच रही है जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रशासनिक सेवाओं में नई क्रांति आई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत में विकास के लिए मिलने वाले फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, रोजगार

बजट रखा गया है ताकि बुनियादी जरूरतों और रोजगार से जुड़ी समस्याओं को दूर किया जा सके। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजना में भी इस क्षेत्र ने अच्छी प्रगति की है। इसके प्रमुख उदाहरणों में सौभाग्य योजना के तहत पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों में 100% घरों तक बिजली पहुँचाना और हर घर जल योजना के तहत लगभग सभी घरों को पानी पहुँचाना शामिल है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा और साफ बदलाव कनेक्टिविटी यानी आने जाने की सुविधा में हुआ है। उड़ान योजना के तहत अब इस क्षेत्र में हवाई सेवाएं काफी बढ़ गई हैं। वर्ष 2014 तक जहां 68 साल में सिर्फ 9 हवाई अड्डे थे, वहीं अब यह संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को भी पहली बार हवाई सेवा से जोड़ा गया है। वर्ष 2023 में इस क्षेत्र को पहली बार वंदे भारत ट्रेन मिली जो गुवाहाटी से नई जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। इससे तेज रफ्तार रेल सेवा की शुरुआत हुई। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की राजधानियों को ब्रॉड गेज रेलवे से जोड़ दिया गया है, जिससे ये राज्य अब बाकी देश से सीधे तौर पे जुड़ गए हैं। बोगीबिल और ढोल, सादिया पुल, मैत्री सेतु, सेला सुरंग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स ने सफर को पहले से आसान और तेज बना दिया है। बोगीबिल पुल की वजह से असम के धेमाजी जिले में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। रेलवे लाइन बिछाने और रेलवे के विद्युतीकरण के काम भी रिकॉर्ड स्तर पे हुए हैं। इन सब का विकास कार्यों ने इस क्षेत्र की दूर दराज की पहचान को अब भारत के साथ मजबूती से जोड़ दिया है। पूर्वोत्तर भारत में सांस्कृतिक बदलाव भी उतना ही बढ़ा रहा है। जो क्षेत्र कभी नजरअंदाज होता था, अब उसकी समृद्ध संस्कृति को देश और दुनिया में सम्मान मिल रहा है। पूर्वोत्तर के विकास के लिए केंद्र सरकार ने केवल आधारभूत संरचना तक ही सीमित प्रयास नहीं किए, बल्कि पर्यटन, कृषि, स्टार्टअप और औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के माध्यम से लगातार योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि इस क्षेत्र की प्राकृतिक और मानव संसाधन क्षमता का बेहतर उपयोग हो सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर आज अलगाव की भावना से निकलकर विकास और विश्वास की नई यात्रा पर अग्रसर है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि पिछले एक दशक में पूर्वोत्तर ने जितनी तेजी से विकास की रफ्तार पकड़ी है वह ऐतिहासिक है। इस दौरान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, निवेश, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, स्टार्टअप और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसी अहम विषयों पर चर्चा की जाएगी। 2 दिन के विशेष सम्मेलन का विशेष बात यह है कि मेघालय के प्रसिद्ध लिविंग रूट ब्रिज 2024 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भारत की एकमात्र नामांकन प्रविष्टि है। वही शिलोंग देश की म्यूजिक कैपिटल के रूप में भी तेजी से अपना पहचान बना रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर समिट एंड एग्जीबिशन 2026 पूर्वोत्तर भारत को देश के विकास इंजन के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मेघालय की पहचान उसकी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता से है, इसीलिए विकास का मॉडल संतुलित और टिकाऊ होना चाहिए। स्पष्ट है कि मेघालय अब संभावनाओं की भूमि से आगे बढ़कर उपलब्धियों की धरती बनने की ओर अग्रसर है। यदि यह गति बनी रही तो आने वाले वर्षों में मेघालय पूर्वोत्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए विकास और नवाचार का प्रेरक उदाहरण बन सकता है।

قد جاء

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत ने राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत क्षय रोग को समाप्त करने के लिए विश्व के सबसे बड़े स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान कार्यक्रम की शुरुआत की है। श्री नड्डा ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के सत्र के दौरान फेफड़ों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग पर मंत्री स्तरीय दृष्टिकोण विषय पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विभिन्न राजमार्गों की गुणवत्ता और रखरखाव प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री गडकरी ने संपर्क और यात्रियों की सुविधा के लिए सतत और सक्षम राजमार्ग हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी और समय पर कार्यान्वयन किए जाने पर बल दिया। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और एस्थेटिक क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा है कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा क्षेत्र में 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द करके सभी मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई रिपोर्टें मिली थी। फलता विधानसभा सीट पर होने वाले पुनर्मतदान

मैदान में दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के मंत्रिमंडल में 23 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस के 2 सदस्य भी हैं। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नए सदस्यों को आज सुबह लोकभवन में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने शपथ दिलाई। अब मंत्रिमंडल में कुल 32 मंत्री हैं। इनमें मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

घर आंगन के शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप हमें सुन रहे हैं FM गोल्ड के 100.1 MHz पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 KHz पर। दोस्तों, आपका और हमारा रिश्ता बेहद पुराना है। हमारी यही कोशिश होती है कि हम आपकी पसंद का पूरा ख्याल रखें, जिससे आप जुड़े रहें अपने मनपसंद शो घर आंगन के साथ। आप हमें मेल भेज सकते हैं और हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com। हमें आपके विचारों का, सुझावों का इंतजार हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा भी। तो खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मीठा सा की आपकी पसंद आपकी नजर।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: जी हाँ, यादें। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर की शुरुआत की खूबसूरत ढेर सारी प्यारी प्यारी यादें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसी की, यानी कि 3 अक्टूबर 1957 को आकाशवाणी ने बॉम्बे यानी मुंबई से देश की सुरीली धड़कन विविध भारतीय सेवा की शुरुआत की। भारतीय श्रोताओं को मनोरंजन और सुगम संगीत का एक स्वदेशी मंच प्रदान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था। उद्घाटन के दिन विविध भारती पर प्रसारित होने वाला पहला गीत मन्ना डे द्वारा गाया गया नाच रे मयूरा था। फिल्म संगीत के साथ साथ हवा महल, संगीत सरिता, भूले बिस्तरे गीत, जयमाला और छाया गीत जैसे अत्यंत लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होते थे। लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त जैसी सिनेमा जगत की महान हस्तियों ने भी अपनी आवाज़

और उपस्थिति से इस सेवा की गरिमा को बढ़ाया। विविध भारती ने हिंदी फिल्म संगीत के माध्यम से पूरे देश को भाषाई और सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया था। लता मंगेशकर की आवाज में गीत फिल्म है महबूबा।

0: AIR at 90.
1: अब बात करते हैं कुछ संवाद और विकास के लिए विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की, जिसे आमतौर पर सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस के रूप में जाना जाता है। हर साल 21 मई को मनाया जाने वाला ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमारी दुनिया की ताकत हमारी विविधता में है। हमारे देश भारत ने तो सांस्कृतिक विविधता की मिसाल खुद मिलती है। अलग अलग भाषा, खान पान, त्यौहार, पहनावे सब मिलकर हमारी पहचान बनाते हैं। सांस्कृतिक विविधता सिर्फ उत्सव नहीं, ये विकास का इंजन है। जब अलग अलग संस्कृतियाँ एक दूसरे से सीखती हैं तो नई नई विचारधारा जन्म लेती हैं, नए आविष्कार होते हैं और समाज आगे बढ़ता है। इस दिन हमें वादा करना चाहिए कि हम अपनी संस्कृति को बनाए रखते हुए दूसरी संस्कृतियों का भी सम्मान करेंगे, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान करना ही सच्चा विकास है। तो आज से शुरू करते हैं, किसी एक नए दोस्त से बात करें, किसी अलग भाषा का गाना सुने या किसी दूसरे त्यौहार में शामिल हों, विविधता को अपनाएं और विकास को आगे, हमेशा आगे बढ़ाते ही जाएं।

और अब बात करते हैं राजीव गांधी की पुण्यतिथि की। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम उन युवा प्रधानमंत्री को याद करते हैं जिन्होंने भारत की आधुनिक बनाने का सपना देखा था। मात्र 40 साल की उम्र में देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने कंप्यूटर और टेलीकॉम क्रांति की नींव रखी, जवाहर नवोदय विद्यालय शुरू किए और शिक्षा विज्ञान को नई दिशा भी दी। वे कहते थे, भारत एक पुराना देश है लेकिन युवा राष्ट्र है और मैं भी युवा हूँ। मेरा सपना एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का है। और इन दूरदर्शी नेता को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी याद हमें प्रेरित करती रहे कि हम मिलकर एक बेहतर भारत बनाएं। और साथ ही आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है, क्योंकि ये दिन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर ही आता है। इस दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत की अहिंसा की परंपरा को मजबूत रखेंगे और मानवता के लिए काम करेंगे। तो आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण भारत बनाने का वादा करें।

0: कभी तो हंसाए।
1: अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में गीत, फिल्म थी आनंद। अब बात करते हैं कुछ विश्व चाय दिवस की। आज हम बात करें एक ऐसे पेय की जिसके बिना सुबह की शुरुआत अधूरी लगती है, और वो है हमारी प्यारी चाय। चाय सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का हिस्सा है। पानी के बाद दुनिया का सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला ये पेय है चाय। सुबह उठते ही चाय, काम के बीच में चाय, दोस्तों के साथ चाय, ठंड में चाय, बारिश में चाय, हर मौके का साथी है चाय। ये सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि लाखों किसानों की रोजी रोटी भी है। भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की चाय तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आज का दिन उन चाय उत्पादकों के नाम है जिनकी मेहनत से ये प्याला हमारे हाथ में आता है। चाय हमें एनर्जी देती है, स्वास्थ्य लाभ देती है और सबसे बढ़िया दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारने का भी बहाना देती है। तो चाय हमें एक दूसरे से जोड़ती भी है। कितने ही रिश्ते चाय की दो प्यालों के साथ शुरू हुए हैं। ऑफिस में, ट्रेन में, घर में, हर जगह चाय से बातचीत शुरू होती है। और आज चाय दिवस पर अपनी फेवरेट चाय बनाकर पीजिए, पिलाइए किसी को और खुश हो जाइए। क्योंकि जैसा कहा जाता है ना, हमेशा हर कोई बोलता है चाय पी लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सौतन फिल्म से गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

0: ईदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: और अब बात करते हैं कुछ स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं के लिए। नए रूप में प्रस्तुत ये योजना महिलाओं को बेहतर वित्त पोषण, मजबूत समर्थन और सपनों को सफल व्यवसायों में बदलने के बड़े अवसर प्रदान करने को तैयार है। ये सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि सशक्त महिलाओं के नेतृत्व में एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक कदम है। स्टैंड अप इंडिया योजना महिला उद्यमियों के लिए नया व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक बैंक लोन प्रदान करती है और योजना प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक महिला को ऋण देने का लक्ष्य रखती है जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। और खास तौर पर इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह महिला उद्यमी होनी चाहिए। व्यक्तिगत उद्यमों के लिए कम से कम 51% शेयरधारिता और नियंत्रक हिस्सेधारी एक महिला उद्यमी के पास होनी चाहिए। ब्याज दर बैंक के सबसे कम दर के बराबर होती है जो आमतौर पर 3% से अधिक नहीं होती और ये ऋण 7 वर्ष तक की अवधि में चुकाया जा सकता है जिससे 18 महीने की अधिकतम मोहलत अवधि शामिल हो सकती है। और इसके लिए खासतौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है, निवास प्रमाण पत्र और व्यवसाय का पता होना चाहिए, व्यवसाय योजना का नाम होना चाहिए और ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए और उनके काम को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।

और अब बात करते हैं पर्यावरण के अनुकूल ही खुद को चलाएं, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल होने और धरती की रक्षा करने से ना सिर्फ ये ग्रह रहने के लिए एक बेहतर स्थान बनता है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। जैसे गर्मियों में घर को ठंडा और ताज़ा रखने के लिए आसपास आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं अपने घर में, और हरियाली से भरा रहेगा आपका ये घर और ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। पूरे हफ्ते कम से कम प्लांट बेस्ड पदार्थों को चुनें जिसमें बहुत सारी सब्जियां, फल, फलियां और अनाज शामिल हों, जिससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद मिलेगी। आप अपनी बैटरी, कागज़, कंटेनर, कपड़े और कठोर प्लास्टिक उत्पादों को रिसाइकलिंग कर सकते हैं इससे पहले कि आप कुछ भी फेंक दें, उसे रिसाइकिल कर लें। आजकल पर्यावरण का सबसे बड़ा दुश्मन है यानी प्लास्टिक, और सिंगल जो प्लास्टिक है वो बैन करने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि गलत है, और इसका इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दें। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करें। अगर हर कोई खुद से ऐसे कदम बढ़ाए जिससे प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे, ताकि स्वच्छ और खुली हवा में सांस ली जा सके। लता मंगेशकर, सुरेश पाड़े की आवाज़ में गीत फिल्म है।

और अब बात करते हैं घर से निकलते हुए यानी गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से पहले सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि गर्मी के चलते अस्पतालों में ओपीडी में डिहाइड्रेशन, उल्टी, सिरदर्द मरीजों की तादाद बढ़ गई है और डॉक्टर ने सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों, बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं, शुगर बीपी के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सर्द गर्म शिकार हो रहे डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि खासतौर पर रात को तापमान बढ़ने से लोगों की नींद प्रभावित हो रही है, जिससे सुबह थकान और कमजोरी की शिकायतें आ रही हैं। इसके अलावा तेज धूप में एसी वाले कमरों में आने जाने के कारण भी लोगों की सेहत बिगड़ रही है और ये भी कहा जा रहा है कि अक्सर एसी को 16-18 डिग्री पर चलाते हैं लोग, जिससे शरीर का तापमान संतुलन बिगड़ जाता है। तो एसी का तापमान हमेशा 24 से 27 डिग्री के बीच रखना ज़रूरी है। ठंडे कमरे से अचानक गर्मी में निकलने से सांस के पुराने मरीजों की समस्या बढ़ रही है। दोपहर 11 बजे से 3 बजे के बीच धूप में निकलने से बचें और बच्चे इस दौरान बाहर न खेलें, नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें, ORS और नींबू पानी, नारियल पानी का सेवन ज़्यादा करें और बाहर पानी जो रेड़ी पर मिलता है उससे पानी पीने से बचें। यदि अगर बहुत ज़रूरी बाहर जाना है तो खास तौर पर छाते और पानी की बोतल साथ लेकर जाएं, साथ ही अपने डॉक्टर की सलाह से दवा की डोज भी ज़रूर रख लें।

और अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपसे होगी अगली मुलाकात। अगली प्रस्तुति तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, यानी सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल

0: उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां AI स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने ये बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his five-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent, and affordable innovation. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocide at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador P. Harish, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border. He further said, it is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India.
2: It is ironic that Pakistan, with its long-tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
1: Defense Minister Rajnath Singh and Minister of Patriots and Veterans Affairs of South Korea Kwon Oh-yul today.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। कार्यक्रम एक ही फिल्म में, एक ही फिल्म कार्यक्रम, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं हर रोज़ एक ऐसी चुनिंदा फिल्म जो कि कहीं ना कहीं हमारे दिल के करीब होती है। तो आज दोस्तों इसी कड़ी में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही फिल्म, या कहूँ कि बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्मों की अगर हम बात करेंगे तो इस फिल्म का नाम ज़रूर हमारे जहन में आता है, जिसने उस दौर में समाज की रूढ़ियों को ना सिर्फ तोड़ा बल्कि देखने वालों के दिलों को भी झकझोर के रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए सन 1975 में आई एक ऐसी क्लासिकल फिल्म जो कि न सिर्फ कहानी के मद्देनज़र हमारे दिल के करीब है, बल्कि अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो बस हम लोगों के दिल में आज भी कहीं ना कहीं बसा हुआ है इस फिल्म का संगीत। जी दोस्तों, बात कर रही हूँ मैं फिल्म जूली की।

दोस्तों, जूली फिल्म जो कि सन 1975 में आई और सबके दिलों में एकदम से छा गई। जूली सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी बल्कि एक ऐसा आईना थी जिसने उस जमाने में, जी हाँ 1975, काफ़ी पहले की बात है, उस टाइम पर जब इंटरकास्ट मैरिज को या फिर शादी से पहले प्रेगनेंसी जो है ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दे हुआ करते थे, उन चीज़ों को बेहद ही संजीदगी के साथ इस फिल्म में दिखाया गया है। बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, दिखाया गया कि किस तरह से एक एंग्लो इंडियन लड़की जूली और एक हिंदू लड़के की ये मोहब्बत समाज की दीवारों से टकराती है। और इस फिल्म से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था एक नई लड़की ने, जिसने अपनी मासूमियत और अपनी दमदार एक्टिंग से रात

जूली फिल्म जिसमें मेन किरदार यानी कि जूली का किरदार निभाया अभिनेत्री लक्ष्मी ने। लेकिन अभिनेत्री लक्ष्मी का सिलेक्शन इस किरदार के लिए होना अपने आप में एक दिलचस्प किस्सा है, और इसके पीछे कोई ऑडिशन या कोई पुरानी सुपरहिट फिल्म का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जूली असलियत में सन 1974 में आई सुपरहिट मलयालम फिल्म चट्टकारी की एक रीमेक थी। जो मलयालम फिल्म थी उस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर था, जो एंग्लो इंडियन लड़की का कैरेक्टर था, वो लक्ष्मी ने निभाया था। और केरल में ये फिल्म इतनी बड़ी, इतनी ज़्यादा ब्लॉकबस्टर रही कि इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और लक्ष्मी जो कि जूली फिल्म में भी उन्होंने अपने एक्टिंग से, अपने अभिनय से दर्शकों को बहुत ही अच्छे से सभी के दिल में वो समा गई, उसी तरह से वहाँ पर भी वो पूरी तरह से छा गई थी, सारे रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिए। और जब इस फिल्म के निर्माता बी नागर रेड्डी और निर्देशक के एस सेतुमाधवन ने इस फिल्म को हिंदी में बनाने का सोचा, तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि भाई हिंदी दर्शकों के लिए एक ऐसी अभिनेत्री लेकर आएँ जो जूली के किरदार में बिल्कुल फिट रहे। अब क्योंकि सेतु माधवन जानते थे कि जो मेन फिल्म मलयालम में बनी थी उस फिल्म में किस तरह से शानदार अभिनय किया था और इस तरह का बोल्ड कैरेक्टर निभाया था लक्ष्मी ने, तो उनसे बेटर इस कैरेक्टर को और कोई नहीं निभा सकता। उस कैरेक्टर के साथ उनके अलावा और कोई जस्टिस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें पता था कि लक्ष्मी की एक्टिंग रेंज कितनी अच्छी है। और यही वजह थी कि लिया गया, चुना गया इस डब्ड, इस रीमेक फिल्म में भी लक्ष्मी को ही एज अ जूली के रूप में। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, सुनते रहिए कुछ सुने अनसुने किस्से फिल्म जूली से।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म के साथ और बात कर रहे हैं हम फिल्म झूली की। झूली फिल्म जिसमें लक्ष्मी जी ने निभाया कैरेक्टर झूली का, और ये उनकी बॉलीवुड की पहली फिल्म थी, यानी कि कह सकते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उनकी पहली फिल्म रही। और पहली फिल्म में उन्होंने वो कमाल करके दिखाया कि फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड उन्होंने हासिल किया। वैसे आपको बता दें, इस फिल्म में एक और ऐसी अभिनेत्री थी जिसे शायद बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की लेडी सुपरस्टार श्रीदेवी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम किया था सुपरस्टार श्रीदेवी ने, और उन्होंने इस फिल्म जूली में जूली यानी कि लक्ष्मी की छोटी बहन इरन का किरदार निभाया था। और उस वक्त श्रीदेवी की उम्र मालूम है कितनी थी? मात्र 11 से 12 वर्ष की।

जी दोस्तों, जुड़े हैं आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और वाकई में इस फिल्म की कहानी जितनी बेबाक थी, वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म की कामयाबी में दूसरा सबसे बड़ा हाथ था इस फिल्म के जादुई संगीत का। जी हाँ, जब भी हम इस फिल्म के संगीत की बात करते हैं तो इस फिल्म के जो संगीतकार हैं उनका जिक्र जहन में आ जाता है, संगीतकार राजेश रोशन साहब, जिन्होंने इस फिल्म से अपनी एक अलग पहचान बनाई। ज़रा सोचिए उस दौर में जब कव्वाली, गज़ल और एक रेगुलर धुनों की बोलबाला था, वही सब चल रही थी। उस वक्त राजेश रोशन साहब ने वेस्टर्न और इंडियन म्यूज़िक का एक ऐसा फ्यूज़न तैयार किया कि हर कोई झूम उठा। जी हाँ दोस्तों, और शायद यही वजह थी कि प्रीति सागर की आवाज़ में जो गीत था माई हार्ट इज़ बीटिंग, वो बॉलीवुड इंडस्ट्री का वो पहला पूरी तरह अंग्रेज़ी वाला गाना बना जो कि हर हिंदुस्तानी की ज़बान पर चढ़ गया। सोचिए, हिंदुस्तान में बॉलीवुड फिल्म में एक पूरा गाना अंग्रेज़ी में, और ये कमाल किया राजेश रोशन साहब ने, उनके संगीत ने। और जो गीत अभी आप सुन रहे थे किशोरदा की आवाज़ में, क्या गीत है। जब भी किसी को मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत होती है, तो उसका दिल यही गाना गुनगुनाने के लिए करता है। जी हाँ दोस्तों, इस तिकड़ी ने इतना खूबसूरत संगीत दिया इस फिल्म में, या कहूँ कि एक ऐसा गुलदस्ता तैयार किया कि जिसकी खुशबू आज भी हम सभी के जहन में बसी हुई है, और वही खुशबू बसी है हमारे दिल में हमारे श्रोताओं के संदेशों की। तो उनके संदेश भी हम शामिल कर लेते हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग

डीलर पूनाराम और कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी एक बार फिर से संदेश भेजते हैं, वीरगाम जंक्शन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजित भावसार, प्रमिला बेन भावसार, भावेश कुमार और सनी भावसार जी के साथ में, सुनील पाठक, कमल, गव्या मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं नरकाली बाजार जगराओ पंजाब से, सुरेश जाधव, अनीता जाधव, सोनार प्रसाद जाधव नेहरू चौक पैठण से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अगला संदेश हम तक पहुंचाया है वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता जी, श्रीमती दीपा, रिमझिम गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, अंकुर राघव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरगांव सुर संगम रेडियो श्रोता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये हैं अजीत भवसार जी, इन्होंने बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी जानकारी हम तक पहुंचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी बहुत खूबसूरत जानकारी हम तक पहुँचाई है। कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहार बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा राधिका, प्रभा देवी तामुरिया हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ हैं मास्टर अल कबीर। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टेलू नायक जी हमारे साथ जुड़े हैं। जलालाबाद वेस्ट से सूरज गगनेजा, पूनम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नोहर राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु सुथार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश डी बी राणा जी का नेहरू विहार दिल्ली से। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये एक अगला संदेश है सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन मुखी जी का शांतिनगर सोनीपत से। ग्राम नागरकोरा जिला राजनंदगांव से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहा, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, अल्ताफ, नीलोफर फातिमा, आफरीन कौसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, सोपान ताड़े, नारायण इंगले जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है संदीप मकर जी ने, ज्योति, मन्नत, भारत, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गुरैया, जालंधर, पंजाब से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुँचाया। संजय ढींगिया, नमन ढींगिया अपार जी के साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। राजकोट से परवीन डिसूजा जूली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दोस्तों बहुत सारे संदेश हैं जो कि हम तक आए हुए हैं। और ये अगला जो संदेश है इसको भेजा है अनिल मोहन जी ने पीटीआई संसद मार्ग से। ज्योति जी का एक बार फिर से हम तक ये संदेश आया हुआ है। और दोस्तों सुधाकर जाधव जी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित वायल, प्रथमेश, सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली जी के साथ में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूषण खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल खेरा फजिल का पंजाब से, विशाल, विशु और लाडली खेरा के साथ में ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यादों का कारवा आज यही तमता है और फिल्म जूली एक फिल्म नहीं बल्कि गुजरे जमाने का वो हसीन लम्हा है जो संगीत के साथ हमारे दिलों में आज भी धड़क रहा है। तो ये सफ़र बस यहीं तक, अब वक्त हुआ आप सभी से विदा लेने का। तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती खूबसूरत संगीत लता जी की आवाज़ में, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स। 1:40 होने को है, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: 2 बजे फिर हाजिर होवांगे फौजी वीरां लई कुछ होर गीतां दे नाल।
2: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਮਨਦੇਵ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

गए हैं। हुकूमत ने सारिफीन, पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। मरकज ने इबोला बीमारी से मुतासर मुल्कों से पहुंच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी मदरसों में प्रेयर गीत के तौर पर वंदे मातरम को लाजमी करार देने का हुक्म जारी किया है। तमिलनाडु में वजीर आला सी जोसेफ विजय की क्यादत वाली काबीना में 4 खवातीन वजीरों की इजाफे के बाद वुजरा की तादाद 33 हो गई है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और इटली ने तिजारत सरमायाकारी को मजबूत और मुस्तहकम करने और सप्लाई के सिलसिले को बेहतर बनाने की गरज से भारत मशरक़ वस्ता यूरोप इकतसादी कॉरिडोर IMEC को मजीद फरोग देने से इत्तेफाक किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी और इटली की वजीर अजम जॉर्जिया मेलोनी ने IMEC की अहमियत और ज़रूरत को तस्लीम करते हुए इसे फरोग देने और इसकी अज़सर नौ तश्कील देने से इत्तेफाक किया है ताकि आलमी तिजारत, खुशहाली और राबतों को बढ़ाया जा सके। वजीर अजम नरेंद्र मोदी और इटली की वजीर अजम जॉर्जिया मेलोनी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में IMEC को एक अहम राबते से ताबीर किया जो यूरोप, मशरक वस्ती और भारत को जोड़ता है और इसके नतीजे में तिजारत, सरमायाकारी और सप्लाई के सिलसिले को बढ़ावा मिलेगा और ये मुस्तहकम होगा। वजीर अजम नरेंद्र मोदी अपने 5 मुल्कों के सरकारी दौरे के आखिरी मरहले में इटली पहुंचे थे जहां से वो आज सुबह नई दिल्ली वापस आए हैं। वजीर दफा राजनाथ सिंह ने खुराक और ज़राअत से मुतालिक तंजीम का एग्रीकोला मेडल वजीर अजम मोदी को दिए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी है। जनाब सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि जनाब मोदी अनाज की यकीनी फरहमी को मुस्तहकम करने, ज़राअत की पायदार तरक्की को फ़रोग देने और गाँवों की तरक्की के लिए जो नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं उसे तस्दीम करने के लिए उन्हें इस एज़ाज़ से नवाजा गया है। वजीर अजम मोदी को कल इटली के शहर रोम में खुराक और ज़राअत से मुतालिक सदर दफ्तर में पुरवकार एग्रीकोला मेडल से सरफराज किया गया था। हुकूमत ने सारिफीन, पेशावर अफराद और एस्थेटिक क्लिनिक्स की जानिब से इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक मसनूआत के इस्तेमाल को ममनू करार दिया है। दवाओं के पैमानों से मुतालिक मरकजी इदारे CDSCO ने कहा कि कॉस्मेटिक्स इंसानी जिस्म पर सिर्फ घिसने, लगाने या छिड़कने के लिए होती हैं। CDSCO ने कहा कि कॉस्मेटिक की फरोख्त, डिस्ट्रीब्यूशन, दरामदात और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक जाब्तों 2020 की गुंजाइशों के तहत मुंजबित होती है। CDSCO ने मजीद कहा कि कॉस्मेटिक सिर्फ सफाई, खूबसूरत बनाने, जाजिबियत में इजाफा करने और इंसानी जिस्म की ज़ाहरी शक्ल को बदलने के लिए होते हैं। CDSCO ने मजीद कहा कि कॉस्मेटिक मसनूआत में ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराहकुन दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक का इस्तेमाल और इंजेक्शन के जरिए कॉस्मेटिक लेना कानून और जाब्तों की खिलाफ वर्जी है। सेहत खिदमात के डायरेक्टरेट जनरल ने इबोला बीमारी से मुतासर मुल्कों से पहुंच रहे या ट्रांजिट कर रहे मुसाफिरों के बारे में एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक जमहूरिया कोंगो, युगांडा और जुनूबी सूडान समेत ज़्यादा खतरा लाख ममालिक का सफ़र कर चुके ऐसे अफराद जिन्हें बुखार, सरदर्द, उजलात में तकलीफ, बिना किसी वजह के खून बहने और उल्टी आने जैसी अलामत जाहिर हो रही हैं वो फौरी तौर पर अपना इलाज कराएं। एडवाइजरी ने खबरदार करते हुए कहा है कि ऐसे मुसाफिर जो इबोला के तस्दीक शुदा या मुश्तबा मरीजों के खून या जिस्मानी मादों के सीधे रबते में आए हैं वो इमिग्रेशन क्लियरेंस से पहले फौरी तौर पर एयरपोर्ट हेल्थ अफसर या हेल्थ डेस्क पर रिपोर्ट करें। मगरबी बंगाल हुकूमत ने तमाम मदरसों में प्रेयर की जगह वंदे मातरम गाना लाजमी करार दिया है। मदरसा तालीमी महकमे ने इस सिलसिले में एक हिदायतनामा जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अब अकलियती उमूर और मदरसा तालीमी महकमे के तहत आने वाले इदारों में जमातें शुरू होने से पहले तलबा को वंदे मातरम गाना लाजमी होगा जो पहले की रिवायत और रहनुमा उसूलों की जगह लेगा। आसाम की 16वीं कानून साज असेंबली का आज पहला इजलास शुरू हुआ। उबूरी स्पीकर चंद्रमोहन पतोवारे ने ऐवान की सदारत की और नए मुंतखब मेंबरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। तमिलनाडु में जोसेफ विजय की क्यादत वाली हुकूमत ने आज अपनी वजारत की तौसी की और रियासत में अब इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई है। कांग्रेस के द्वारा अरकान समेत काबीना में 23 नए वुजरा को शामिल किया गया है। हालिया तौसी के बाद वजीर आला सी जोसेफ विजय समेत काबीना में वुजरा की कुल तादाद 33 हो गई है। 6 दहाइयों के बाद रियासती काबीना में कांग्रेस पार्टी की वापसी हुई है जो साल 1967 के बाद पहली दफ़ा तमिलनाडु की वजारत में अपनी नुमाइंदगी कर रही है। नई तौसीशुदा काबीना में 4 खवातीन वजीरों को भी शामिल किया गया है। नए अराकीन को आज सुबह लोक भवन में गवर्नर विश्वनाथ अरलेकर ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफबरदारी

0: विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह्युल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
2: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सैक्रिफाइस का सिंबल है, यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
3: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले 3 महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है। टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
1: India has recently launched...
2: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केंद्रों और माध्यमिक शिक्षा केंद्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में पलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
2: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, VCK, CPI, CPM, IUML और AIADMK के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले AIADMK ने आज लोक भवन में

0: हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले शपथ

0: तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
1: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
2: चाय, ये चाय।
3: आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक, लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जनकल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आपके मोस्ट अवेटेड प्रोग्राम एक ही कलाकार में। आज मैं हूं आपके साथ, आपकी साथी, आपकी मितवा, आपकी अपनी दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा के उस शानदार फिल्मकार की कहानी जिन्होंने ना सिर्फ फिल्में बनाई बल्कि एक पूरा दौर गढ़ के रख दिया। एक ऐसा नाम जिसने रोमांस को नई उड़ान दी, संगीत को नई चमक दी,

और दिए बॉलीवुड को कई यादगार सितारे। दोस्तों, आज का ये खास कार्यक्रम समर्पित है मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक सुबोध मुखर्जी साहब को। तो चलिए चलते हैं पुराने दौर की खूबसूरत गलियों में, जहां हर धुन में जादू था, हर कहानी में मासूमियत और हर फिल्म में दिल धड़कता था।

दोस्तों कितना अच्छा होता ना जब यूं ही हंसते गाते जिंदगी का सफ़र गुजर जाए। 14 अप्रैल 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में जन्मे सुबोध मुखर्जी एक ऐसे परिवार को बिलोंग करते थे जिसका हिंदी सिनेमा से बड़ा गहरा रिश्ता रहा। उनके बड़े भाई शशाधर मुखर्जी पहले से ही इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे, लेकिन सुबोध साहब ने अपनी अलग पहचान बनाई और वो पहचान थी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ, संगीत से भरी फिल्में और शानदार मनोरंजन। कहा जाता है कि उन्हें फिल्मों में स्टोरी टेलिंग सबसे ज़्यादा पसंद थी। वो मानते थे कि अच्छी फिल्म वही है जो दर्शकों के दिलों में उतर जाए। 1955 में आई मुनीम जी और यहीं से शुरू हुआ सफलता का सिलसिला। इस फिल्म में थे सदाबहार देवानंद साहब और संगीत था एस डी बर्मन साहब का। यानी सोचिए, कहानी दमदार, संगीत लाजवाब और निर्देशन सुबोध मुखर्जी का। जादू तो होना ही था।

दोस्तों, फिल्मिस्तान स्टूडियो में सहायक निर्देशक के तौर पर काम करने वाले सुबोध साहब को पहली फिल्म डायरेक्ट करने का मौका मिला फिल्म पेइंग गेस्ट से, लेकिन उन्होंने ये फिल्म बीच में ही छोड़ दी। बतौर निर्देशक सुबोध साहब ने साल 1955 में फिल्म मुनीम जी को निर्देशित किया। देवानंद, निरूपा रॉय और प्राण साहब जैसे सितारों से सजी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इस फिल्म को हिट देने के बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाले कमाल के निर्देशक सुबोध साहब की शागिर्द से लेकर जंगली और तीसरी आंख जैसी फिल्में आज भी दर्शकों की पहली पसंद रहती हैं। निर्देशन के अलावा वे अपनी फिल्मों के लिए लेखन का काम भी करते थे। शागिर्द उनकी खुद की लिखी फिल्म है, जिसमें उनके भतीजे जॉय मुखर्जी और सायरा बानो के साथ आईएस जौहर साहब मुख्य भूमिकाओं में थे। और इसके बाद 1957 में उन्होंने पेइंग गेस्ट को भी निर्देशन दिया, जो एक बार फिर से सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का बैनर SMP सुबोध मुखर्जी प्रोडक्शंस शुरू किया और इसकी पहली फिल्म थी लव मैरिज, जिसमें देवानंद साहब और माला सिन्हा जी मुख्य भूमिकाओं में थी। वैसे अगर बात करें सुबोध मुखर्जी साहब के परिवार की, तो उनके परिवार में ऐसे कई नाम हैं जो हिंदी सिनेमा जगत का बड़ा जाना पहचाना चेहरा रहे हैं। फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी उनके भाई थे और बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि दिग्गज अभिनेता जॉय मुखर्जी से लेकर हिंदी सिनेमा के जाने माने चेहरे देव मुखर्जी, रानी मुखर्जी, काजोल और तनिषा मुखर्जी भी उनके ही परिवार से हैं। बातें करेंगे उनके बारे में और भी, लेकिन पहले ये गीत।

दोस्तों, इस गीत से पहले हमने बात की थी फिल्म शागिर्द की, जो उनकी खुद की लिखी फिल्म थी। उनकी फिल्मों में ना एक बात कॉमन थी कि उनकी कहानियां बहुत भारी नहीं होती थी, लेकिन असर बहुत गहरा छोड़ती थी। परिवार, प्यार, रिश्ते और ज़िंदगी को मुस्कुरा कर जीना, यही उनकी फिल्मों का असली रंग था। और शायद यही वजह है कि आज भी, इतने सालों के बाद भी, उनकी फिल्में सिर्फ देखी नहीं जाती हैं, महसूस की जाती हैं, इन्जॉय की जाती हैं। उनकी फिल्मों में संगीत हमेशा कहानी का हिस्सा बनता था, सिर्फ गाने नहीं। यानी अगर ये कहा जाए कि वो म्यूजिकल एंटरटेनमेंट के मास्टर थे, तो शायद गलत नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको सुनवाते हैं शागिर्द फिल्म का ये गीत।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान, मुद्दत से दिल उदा दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा।

जबरदस्त ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जॉय मुखर्जी और आईएएस जौहर साहब की और उस पर रफ़ी साहब की आवाज़ का कमाल, यही तो था सुबोध साहब का रचा हुआ जादू। 1961 में आई फिल्म जंगली ने हिंदी सिनेमा में दोस्तों काफ़ी कुछ बदल दिया। इस फिल्म ने शम्मी कपूर की इमेज को नई ऊंचाई दी और लॉन्च किया खूबसूरत सायरा बानो को। अच्छा, आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ। जंगली फिल्म का शुरू में नाम मिस्टर हिटलर रखा गया था, जिसे बाद में बदल कर जंगली कर दिया गया। और वो याहू, याद है ना आपको, अभी सुनवाऊंगी, जो आज भी लोगों की जुबान पर है, उसे असल में शम्मी साहब ने नहीं बल्कि उनके दोस्त प्रयागराज साहब ने कहा था, मतलब अपनी आवाज दी थी। सुबोध साहब उन फिल्मकारों में से थे जिन्होंने रंगीन फिल्मों को नई पहचान दी और जंगली उन शुरुआती फिल्मों में से थी जिन्होंने ईस्टमैन कलर टेक्निक को बड़े स्तर पर लोकप्रिय बनाया। कश्मीर की वादियां, शम्मी कपूर की एनर्जी, संगीत की मिठास और कैमरे में कैप्चर्ड खूबसूरती, सब कुछ मिलकर एक सपना सा बन गया। तो चलिए सुनवाते हैं आपको याहू।

मोहम्मद रफ़ी को भी आपने सुना फिल्म जंगली में, और आज हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम में सुबोध मुखर्जी साहब की। दोस्तों, इस फिल्म यानी जंगली में जो अभिनय किया सायरा बानो साहिबा ने, उसके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर फीमेल का अवार्ड मिला और शम्मी कपूर साहब रातों रात सुपरस्टार बन गए। वैसे उनकी फिल्मों के गाने ना बड़े कमाल के होते थे, जो रिलीज़ होते ही लोगों के दिलों पर छा जाते थे। लोगों ने भी महसूस कर लिया था कि ये निर्देशक सिर्फ फिल्में नहीं बनाते, ये यादें बनाते हैं। लगभग दो दशकों तक हिंदी सिनेमा को नई राह दिखाते हुए सुबोध मुखर्जी साहब ने फिल्म निर्माण और निर्देशन में कई आयाम गढ़े। इन दो दशकों में उन्होंने अपनी कला के जरिए हिंदी सिनेमा को एक नए मुकाम तक पहुँचाया। उन्होंने अपने करियर में तकरीबन 8 फिल्मों का निर्माण और 9 फिल्मों का निर्देशन किया। उनकी आखिरी दो फिल्में तीसरी आंख जो कि 1982 में और उल्टा सीधा 1985 में रिलीज़ हुई थीं।

दोस्तों 21 मई 2005 को मुंबई में कैंसर के कारण 84 वर्ष की आयु में वे हमारे बीच से विदा हो गए। हिंदी सिनेमा में बेहतरीन और साफ सुथरा मनोरंजन देने के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो दोस्तों ये था हिंदी सिनेमा के उस सुनहरे कलाकार को हमारा छोटा सा सलाम, जिसने फिल्मों को सिर्फ मनोरंजन नहीं एक खूबसूरत एहसास बनाया। इसी के साथ इस कार्यक्रम से दीप्ति पाठक निधीश को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे फिर यूं ही किसी संगीतमय मोड़ पर। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही

0: अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
0: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
1: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग एनसीईआरटी सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
0: उमंग एनसीईआरटी के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
1: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
0: जी,
1: अगला संदेश हमें मिला है
0: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश, कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
0: एनसीईआरटी के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
1: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
0: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में, और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
0: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
1: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
0: जी,
1: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
0: जी,
1: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
0: जी,
1: तो शुरू करें?
0: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
1: जी
0: श्रोताओं, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
1: जी श्रोताओं, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
0: जी,
1: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
0: जी हाँ श्रोताओं, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
1: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियां मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
0: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
1: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
0: श्रोताओं, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
1: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
0: जी,
1: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
0: जी,
1: अद्भुत बात यह है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
0: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरुंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
1: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
0: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
1: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
0: इसीलिए शोला वनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
1: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
0: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़

0: पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृ वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
1: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की चीं चीं की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से कान

गाय करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: चीख पुकार की आवाजें सुनकर बिल्ली बहुत घबराई और डर कर भाग गई। थोड़ी देर के बाद जब चिड़ा और चिड़िया घर लौटे तो उनके बच्चों ने सारा किस्सा सुनाया। वो बहुत खुश हुए और अपने पड़ोसी कौवे का दिल से शुक्रिया अदा किया।
1: हाँ तो बच्चों, अभी आपने सुना कि आपस में मिलजुल कर रहने से किस प्रकार इन पक्षियों ने एक दूसरे की मदद ही नहीं की लेकिन संकट से भी एक दूसरे को बचाया। तो जरा बताओ, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हो? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पड़ोसी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंगलिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम पड़ोसी। इस कार्यक्रम के बाद आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है जंगल के साथी।
2: इस कार्यक्रम में जंगल के पशु पक्षियों के बीच मित्रता और सद्भाव की भावना को एक सुंदर नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि परस्पर प्रेम और सहयोग यदि हमारे जीवन में हो तो हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूँ। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: ध्यान लगाकर सुनो सुनो, कान लगाकर सुनो सुनो, ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
0: हाँ, सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन, एक हिरन भाई, एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई, एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
0: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई, एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन।

0: भाई एक ही रन।
1: दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
0: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
1: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: दादी माँ, दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
1: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना क्या हुआ।
2: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल

0: में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
1: बादल देखे फिर दादी माँ?
0: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
1: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
0: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
1: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
1: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए। फिर
0: अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
1: खरगोश हिरन और मोर।
0: शाबाश। तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
1: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
0: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: हम तुम खुशियां बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़, इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू,
7: इसे काटो।
8: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल

0: खुश हो जाएगा और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
1: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
2: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी

0: वो काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
1: रुको, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
2: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
3: हाँ टू, चल आगे चलते हैं।
0: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
3: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
2: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
0: वो उसे काटने लगे।
4: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
2: अच्छा ठीक है,
3: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
0: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
1: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे? अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें?
3: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
0: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
5: अरे अटकू मटकू,
0: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
2: पेड़ हमारे
3: दोस्त हैं।
2: जीवन में हरियाली लाओ,
6: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
7: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
8: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
7: नमस्कार।
9: उमंग उमंग उमंग उमंग।
10: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: उसको हम कंट्रोल कर पाएंगे।
1: जो भी चीज अगर आप आज की बीमारी में देखेंगे तो मैं ये नहीं कहूंगी इट इज अ क्योर, इसका कोई पूर्ण रूप से मूल रूप से या जड़ से इसका इलाज हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। जैसे अगर हम टीबी की बात करें तो हम उसमें एटीटी देते हैं, हम सबको पता है, और अगर हमने बिल्कुल नियमित तौर पे वो दवाई खाई है तो उसका मूल जड़ से इलाज होता है जो हम कहते हैं। लेकिन साइकेट्री की या जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी है, इसका इलाज एक रोकथाम जरूरी है, एक हम बचाव कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, हार्म रिडक्शन कर सकते हैं, यूजफुल उसमें ले सकते हैं, लेकिन पूरी तरह वो चीज़ जाना बिल्कुल आज के ज़माने में मैं कहूँगी नामुमकिन है।
0: आप एक डॉक्टर भी हैं, एक टीचर भी हैं, एक जो को पढ़ाती भी हैं, आप एक माँ भी हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके पास रोज़ाना ऐसे ही मरीज़ आते हैं, तो आप क्या देखती हैं कि उसमें कहीं ऑफिस से परेशान है वो, कभी घरेलू ज़िंदगी से परेशान है, रिश्तों से परेशान है, या आपको लगता नहीं है कि सब कुछ ये मोबाइल और इंटरनेट की ही देन है?
1: मैं बिल्कुल इस बात से आपके बिल्कुल इस बात से वाकिफ हूँ और इस बात से एग्री करती हूँ कि आपने जो बात कही है, ये चीज़ हम पूर्ण तरह एग्री करते हैं। और जब आप कहोगे कि इसको ठीक या इससे थोड़ा उभरा कैसे जा सकता है, इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हम उस समय इस चीज़ को यूज़ करते हैं। अगर आप और मैं अपने ज़माने में देखें तो जनरली अगर 20-25 साल पहले जाएं तो शायद ही रेयरली फीमेल्स वर्क करती थी
0: जी।
1: हमारे घर में एक वर्किंग मेंबर होता था जो फादर या मेल होता था, महिलाएं घर पे रहती थी और वो बच्चों का ध्यान रखती थी, वो देखती थी कि बच्चे कितनी देर टीवी देख रहे हैं, कितनी देर नहीं देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं। इस चीज पे बहुत कड़ी नजर एक माँ के तौर से होती थी, एक चीज। अब माँ शाम को बच्चे आने के बाद में आती है, आई कंप्लीटली एग्री, और मैं खुद एक वर्किंग फीमेल हूं तो मुझे लगता है कि इट इज ये एक महिला की मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी भी है कि हम एक अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे बढ़ें। लेकिन देयर हैज़ टू बी ए बैलेंस। अगर घर में दो लोग हैं और वो दोनों ही वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वापस जब पेरेंट्स आते हैं तो आप समझिए रोज़मर्रा की जो हमारी ऑफिस की दिक्कतें हैं, हमारी गलती है कि हम उन्हें घर लेके आते हैं, हम उन्हें सॉल्व करके आए। जब हम घर पे हों तो हम घर के बारे में सोचें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। आज की तारीख में अगर घर में चार मेंबर हैं तो चारों के पास में फोन है, इंटरनेट की सुविधा है, और चारों अलग अलग सोफे पे बैठ के इंटरनेट देख रहे हैं, पापा भी देख रहे हैं, मम्मी भी देख रहे हैं, अब्बू भी देख रहे हैं, दादू भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कोई ये बात समझ ही नहीं रहा कि आराम से वो चार लोग बैठ के चाय पी के बात भी कर सकते हैं,
0: बात भी कर सकते हैं,
1: वो चीज नहीं है। पहले हमारे ज़माने में हमारे अबू क्या करते थे कि हमारे साथ में बैडमिंटन खेलते थे, गर्मियों की छुट्टियों में हम लूडो या चेस खेलते थे, आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो क्या इस पे कैसे हम कदगन लगा सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं इसको?
1: देखिए जब हम एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं तो फिर हम उसको थेरेपी करते हैं
0: जी।
1: जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ोन आजकल की बेसिक निहायती इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपना फ़ोन रिस्ट्रिक्ट करना होता है, एक टाइम फ्री जोन होता है। जैसे कभी हम काम करते हैं और फिर हमें संडे बनाया गया है।
0: बिल्कुल।
1: संडे क्यों बनाया गया है? कि हम काम नहीं करेंगे,
0: काम नहीं करेंगे,
1: वो हमारी सेहत के लिए और हमारे जहन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से क्या हम अपनी ज़िंदगी में एक रूल बना सकते हैं कि हम जब ऑफिस से आएंगे उसके 2 घंटे बाद फोन नहीं देखेंगे, उसके 15 मिनट हमें अपने आप को टाइम लिमिट करना पड़ेगा। कि हो सकता है हम सब वर्किंग हैं और हम सब अर्जेंट कंडीशंस में वर्किंग हैं
0: जी।
1: जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं अपना फोन नहीं देखूंगी और कोई मरीज का फोन आ गया कि वो बहुत सिक है, तो वो मुझे लगता है कि वो नेग्लिजेंस है। तो क्या ऐसा हो सकता है जो हमें करना चाहिए, अपने आप को, हम सबको करना चाहिए कि टाइम लिमिटेड फोन देखें, कि हमें 15 मिनट्स देखना है, इतने आर्स का ड्यूरेशन फ्री रखना है, फोन आए तो फोन अटेंड करना है, ना कि सोशल मीडिया पे चीजें पोस्ट करना है। अगर आप देखोगे जितने लोग अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पे भी पोस्ट कर रहे हैं, मैं उस बारे में भी बात करूंगी। आप कहीं घूमने जाते हैं, लोग अपने मतलब US घूमने जा रहे हैं, उस एनवायरमेंट को, उस माहौल को अपने अंदर असिमिलेट करने की जगह, उस चीज को एंजॉय करने की जगह लोग फोटो खींचते हैं,
0: सही बात है।
1: आप उस चीज को महसूस नहीं करते, और मुझे लगता है कि हम

0: सी जगह जा रहे हैं, तो हमें उसको अंदर से महसूस करना चाहिए, वो कैसा दिख रहा है, कैसी हवा चल रही है, क्या आवाज सुनाई दे रही है।
1: बिल्कुल सही।
0: तो वरना हम टीवी में ही देख लीजिए, अगर हमको फोटो खींचनी है, लेकिन लोग फोटो खींचते हैं, 150-200 फोटो खींचेंगे, फिर उसके बाद में उसको आधे से ज्यादा टाइम सेलेक्ट करेंगे, जो हम अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, हम अडल्ट्स हैं, हम घूमने आए थे अपने बच्चों के साथ में, पत्नी के साथ में, माँ बाप के साथ में घूमने आए थे, उस बारे में भी हम कुछ डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम उनके साथ में इंजॉय करने के बजाय पहले फोटो खींचने में टाइम खराब करेंगे, फिर उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर पोस्ट करेंगे, एंड उसके बाद में भी गेम खत्म नहीं हो रहा,
1: हम
0: लाइक्स देखते हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या है।
1: बिल्कुल,
0: ये हो गई बड़ों की बात। छोटों की बात पे अगर हम आए तो छोटे बच्चे जो हैं, मैं कई बार, मेरे पास जो बच्चे आते हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, सबसे कॉमन सवाल है, मे बी शुरू के दो इंट्रोडक्शनरी सवालों के बाद में सवाल पूछती हूँ, और वो सवाल है, आप अपने माता पिता से कितनी बार बात करते हो दिन में?
1: तो उसका जवाब,
0: उसका जवाब
1: समझ गया मैं,
0: दो मिनट का साइलेंस के बाद में, जब जरूरत होती है तब बात कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अब आप समझिए, वो दो मिनट बच्चे को क्यों लगा, कि वो सोच रहा है उसने आखिरी बार अपने माँ बाप से बात कब करी थी, और वो भी कई बार बेफिजूलत की बात करना बड़ा जरूरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि बेटा आज स्कूल में दिन कैसा रहा, नंबर कितने आए, पढ़ाई में क्या था, होमवर्क क्या है, इसके अलावा
1: जी
0: आज आपका दिन कैसा रहा।
1: बिल्कुल,
0: ये एक सवाल है जो बहुत जरूरी सवाल है मेरे हिसाब से।
1: बिल्कुल,
0: ये आपने कब पूछा था आखिरी बार अपने बच्चे से?
1: बिल्कुल, ये तो सवाल है,
0: ये सवाल है, और ये बहुत जरूरी सवाल है।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो कोई ऐसा मरीज आया हो जो मोबाइल एडिक्टेड हो, इंटरनेट एडिक्टेड हो, जरा सा हमारे सामेईन को बताया, ताकि उससे सुन करके वो भी कुछ सीखें, और उनके आसपास भी कोई अगर ऐसा हो तो उनके लिए कारामद बात हो।
0: मैं मरीज की बहुत डिटेल्स तो डिस्क्लोज नहीं,
1: नहीं
0: कर सकती,
1: बिल्कुल नहीं, नाम बिल्कुल मत लीजिए।
0: मैं आपको एक फैमिली के बारे में बताऊंगी। एक बच्चा था जो 15 साल का था, उसका छोटा भाई था 10 से 11 साल का, ये दो बच्चे थे। उनके फादर जनरली अपने काम के बारे में बाहर रहते थे, उनकी मदर वर्किंग थी, वो एक अध्यापिका थी, तो वो उस समय जब बच्चे स्कूल से आते थे तब वो घर में रहती थी, लेकिन वो लेडी बहुत स्ट्रांग लेडी इन टर्म्स ऑफ कि डोमिनेंट के बच्चों को संभाल पाए वो नहीं थी, बच्चे शुरू से पढ़ाई में बे इंतहा अच्छे थे, तो माता पिता को भी अपनी तरफ से ये कोई शक नहीं था कि बच्चे आगे अपना फ्यूचर ढंग से डिसाइड कर लेंगे। धीरे धीरे जब ये फ़ोन का एरा आया और इंटरनेट आया, तो उसके बाद में बच्चे धीरे धीरे फ़ोन देखने लगे, और वो फ़ोन पहले तो ऐसा होता था कि थोड़ा बहुत क्लास वर्क नहीं करते थे या होमवर्क नहीं करते थे, जो क्लास में काम छूट जाता था वो नहीं करते थे। मदर को लगा ठीक है, अभी ये उम्र का तकाजा है, 14-15 साल की उम्र होती है, बच्चे थोड़ा सा थोड़ा अपने आप में ये समझने लगते हैं कि हम सब समझते हैं, हमें आता है। ऐसे उन्होंने धीरे धीरे करके आखिरी के 4 या 5 महीनों में वो बच्चे उस लेवल पे आ गए कि दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे। उसके बाद में वो उन्होंने वो टीवी के आगे जो अपना वीडियो गेम है उसके आगे लगे रहते थे। हद तब हुई जब उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया। वो खाना पीना तभी खाते थे जब उनकी मम्मी उनके हाथ में कटोरा देके जाती थी दाल चावल, तो वो खा लें, या रोटी सब्जी, तो प्लेट हाथ में है तो हमने खा लिया। बाथरूम रोकने के लिए भी वो वेट कर रहे होते थे कि ये वाला तो स्कोर कर ही लेता हूँ, फिर उसके बाद में आगे जाता हूँ। इस लेवल पे स्थिति आ गई थी, नहाना धोना बंद कर दिया था, खाना उतना ही अगर माँ ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं ठीक है, दोनों बच्चे। फिर उसकी उसकी जो जब वो हमारे पास में आए, तो हमने उनको एक चीज़ समझाई कि अब चीज़ें हो चुकी हैं, तो उसको जो पहले चीज़ हो चुकी है, जो ख़राब है, उसके बारे में बार बार हम उनको बताएं कि नहीं, आपने पहले ध्यान देना चाहिए था, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड, मतलब मुझे लगता है कि उपाय से ज़रूरी काम इम्पॉर्टेंट होता है, तो हमने उनको एक ही चीज़ समझाई कि कोई बात नहीं, हमें उस उन दोनों बच्चों को एडमिट करना पड़ा, क्योंकि वो उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहे थे। अगर जैसे ही टीवी उसकी मदर बंद कर रही है तो वो लड़ने पे आ जाते थे, यहाँ तक कि मार पिटाई पे उतारू थे वो।
1: बिल्कुल,
0: जीने और मरने वाली सिचुएशन थी, अपना सर तक दरवाजे में, मतलब दीवार में मारते थे।
1: ऐसे
0: इस लेवल की समस्या है, जो कि हमें लगता है कि नहीं इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है, वो बहुत बड़ी दिक्कत है आज की तारीख में। और फिर हमने उनको

0: में भर्ती रखा
1: जी।
0: और उस बच्चे ने फिर इंजीनियरिंग में करा भी, पर अगले 2 या 3 साल तक जब ने उसको फॉलो अप किया तो हमने छोटा वाला फोन दिया हुआ था। ऑल्दो उसकी वजह से उसको कुछ लिमिटेशंस थी, क्योंकि आज के ज़माने में आपको पता है छोटे क्लास से लेकर इंजीनियरिंग तक के बच्चों को इंटरनेट की आवश्यकता है, तो उससे उसका डाउनफॉल हुआ, बट एटलीस्ट ही इज एबल टू रीच। बट ये हर समय हर वक्त हर मरीज के साथ में हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं
1: है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। एक चीज़ और भी है कि हम चूंकि इंटरनेट का ज़माना है और रील का ज़माना है, तो रील पे बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, हमारे सामने भी आती हैं, कई बार हम भी देखते हैं और देखते रह जाते हैं कि बैठे 5 मिनट के लिए और वो आधा घंटा निकल जाता है, क्लास में जाना है या कोई प्रोग्राम करना है तो देख लेते हैं, ज़रा सा एक रील देख लेते हैं, लेकिन एक देखा, दो देखा, तीन देखा, मालूम चला अरे वक्त तो निकल गया। हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है, तो बच्चे तो जाएंगे ही, लेकिन इसमें एक चीज़ और आई है कि रील में हर चीज़ सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन भी आ रही है और लोग उसको फॉलो भी करने लगे हैं, जिससे हमारा समाज भी बिगड़ रहा है और सेहत भी बिगड़ रही है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम ज़्यादातर अगर मोबाइल देखें, टीवी देखें, यानी स्क्रीन को हम ज़्यादातर देखें, तो हमारे जिस्म के अंदर बदलाव आएगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। तो इस पर आप क्या कहती हैं?
0: जब भी हम इंटरनेट में स्क्रीन टाइम देते हैं तो हमारा जो स्क्रीन टाइम मैंने 1.5 से 2 घंटे बताया था फॉर नॉट वर्किंग पर्पसेस, अगर उससे ज़्यादा हम चीज़ें करते हैं और स्पेशली हम रील्स देखते हैं, आप देखिए अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो आपका एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, एक स्टोरी बन रही है, तो आप विच मीन्स यू आर अटेंडिंग टू थिंग्स, आपका अटेंशन बन रहा है उस एक मूवी में, उस एक एपिसोड में,
1: बिल्कुल वो कहानी बनती चलेगी,
0: कहानी बनती है, विच मीन्स आपका वर्क, दिमाग वर्क करता है कि अच्छा ये ऐसे है, प्रीवियस वाली चीज से ये ऐसे कनेक्टेड है, विच मीन्स यू आर स्टिल इंक्रीजिंग द अटेंशन।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जब आप रील्स देखते हो तो एक चीज खत्म होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो कि उस जो रील आप देख रहे हो उससे 4 रील पहले आपने क्या देखी थी आपको याद
1: याद नहीं, बिल्कुल।
0: उसका कारण यह है कि वो इनअटेंशन कॉज करता है, वो इनअटेंशन फिर आपकी नॉर्मल वर्किंग में आता है, वो चीज इनअटेंशन से एकेडमिक डिक्लाइन है, सोशल डिक्लाइन है। आप रील्स इतने ज्यादा वो टेम्पटिंग होते हैं, अभी आ रहा है वो, फिर वो आ रहा है, फिर क्या नया आएगा, ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ये नई चीज की तलाश कर रहा है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप इसलिए आपको टाइम का पता नहीं चलता क्योंकि एक नई चीज आती है, तो नई चीज आती है तो आपको टाइम खराब होता है, साथ में आपका इनअटेंशन, क्योंकि कोई किसी चीज से कोऑर्डिनेट कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, वो एक एपिसोड एक चीज दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो यू फील इनअटेंटिव। अच्छा नहीं पसंद आ रहा है तो स्क्रॉल करो आप, तो आप ये समझिए ना तो हमारे पास में उतना कंसंट्रेशन के साथ में हम उस चीज को समझना भी नहीं चाह रहे, तो वो हमारे हर ऑक्यूपेशनल एकेडमिक सोशल डिक्लाइन का कारण है, तो वो चीज़ हमें ध्यान देनी पड़ेगी।
1: बिल्कुल, इसमें जो आपने एक बात बताई बहुत ही गजब की और इस तरफ मेरा भी ध्यान नहीं गया था, शुक्रिया आपका, कि इनअटेंटिव होता है कि हम सोचते नहीं हैं, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है और वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है और हम भी जब किसी के पास जाते हैं तो उसको भी रील ही समझते हैं और निकल जाते हैं, उसने क्या कहा हम समझ नहीं पाते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मतलब पॉइंट दिया आपने और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सामईन भी इस बात को समझ चुके होंगे। तो आप ये बताइए कि बच्चों को हम किस तरीके से रोके, या बड़ों के अंदर अगर ये खामी आ चुकी है तो उसको कैसे रोके। ये दोनों ही एक बड़ा मुश्किल मरहला है, बच्चे को रोकना भी एक जुए शीर का लाना है और बड़ों के सामने अगर आप कुछ बात करते हैं तो वो कहते हैं अच्छा अब आप कहेंगे मुझे, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो बताएं आप कुछ है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे डिफिकल्ट टू हैंडल एज अ साइकियाट्रिस्ट पर्सपेक्टिव, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बच्चों के साथ में अगर हम अपने परिवार के साथ में रहकर और उनको एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस दें, आउटडोर एक्टिविटीज, इंडोर एक्टिविटीज, उनसे बात करें जो हम पहले टाइम में करते थे जिससे हमारा दिमाग ठीक होता था, वो चीजें हमें उनके साथ करनी चाहिए। क्या आप अपने बच्चे को सुबह उठा के मॉर्निंग वॉक पे ले जाते हो, क्या नेचर वॉक पे ले जाते हो? नहीं,
1: बिल्कुल नहीं।
0: मैं ले जाती हूँ, जो उसकी दादी ने पेड़ उगाए हैं उसमें अमरूद कितने हैं वो गिनवाओ उससे कभी।
1: क्या बात,
0: उसके अमरूद गिनो और फिर उसको बताओ कि 6 नहीं 9 अमरूद हैं जो मैं करती हूँ।
1: क्या बात, बाकी 3 तलाश करो,
0: बाकी 3 ढूंढो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: ये चीज आप अपने बच्चे की, आपकी वेकेशंस हैं, बच्चे की वेकेशंस हैं, कभी लूडो खेल के तो देखो।

0: चेस सिखाओ जिस जिसमें बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ेगा।
1: बिल्कुल।
0: फुटबॉल खेलो, बैडमिंटन खेलो, जिससे कि आउटडोर एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। आप बच्चों को एक बार उनके साथ इंगेज होके तो देखो, लेकिन उसके लिए पहले हमें फ़ोन छोड़ना पड़ेगा।
1: बिल्कुल, यही मैं आता
0: हम तो छोड़ें उसको
1: जी।
0: तब तो हम बच्चों को बोले।
1: बिल्कुल।
0: महात्मा गांधी जी का भी सेम सिचुएशन थी।
1: हाँ।
0: जब उनको किसी ने कहा कि मीठा ज्यादा खाते हैं, मेरे बच्चे को समझाओ, तो उन्होंने कहा एक महीने बाद आओ।
1: बिल्कुल।
0: तो पहले खुद तो छोड़ के देखे हम।
1: बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन मसला यही है कि मैं आपके साथ जो अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अपने सामईन के लिए बात कर रहा हूँ कि बच्चों का आपने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आप सुबह उठिए, उनको वॉक पर ले जाइए, अगर
0: टाइम है, वक्त है,
1: तो लेकर जाइए।
0: आप 10 मिनट पहले बच्चे को उठाओ बस।
1: बिल्कुल, 10 मिनट में आपका बहुत कुछ हो सकता है। और बच्चों से जो आपने कहा कि भाई 6 नहीं 9 है, उसको तलाश करो, तो तलाश करना अगर बच्चे ने सीख लिया तो फिर तो वो तलाश कर ही लेगा, अपने आप को भी तलाश कर लेगा। जब बचपन में एक किसी चीज़ को तलाश करना शुरू किया तो अपने आप को तलाश कर लेगा। बहुत शुक्रिया। लेकिन बात ये आती है फिर वही कि हमारी बात हम कैसे
0: देखिए, हर इंसान का, अगर हम बड़ों की बात करें तो हम सबका एक वीक पॉइंट है, हर इंसान का होता है। मैं नहीं मान सकती अंटिल अनलेस आप सोशियोपैथ हो, साइकोपैथ हो, हर इंसान का एक वीक पॉइंट है। ज्यादातर वो वीक पॉइंट उनके बच्चे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: आप, मैं हमेशा यही फॉलो करती हूँ कि आप वीक पॉइंट पे अगर आप वर्क कर दोगे, आप उनको समझाओगे कि आपके फोन देखने से आपकी जहनी, आपकी शारीरिक समस्याएं तो ठीक हैं, लेकिन उससे आपके बच्चे भी वही चीज सीख रहे हैं, तो आप उस चीज को समझाइए। दूसरी चीज है कि आपको एक 20-20-20 या 30-30-30 का रूल है, विच मींस कि अगर हमने 30 मिनट्स या 20 मिनट्स ऑफ स्क्रीन टाइम है तो 20 या 30 फीट दूर देखना है और 20 या 30 सेकेंड्स के देख लेना। मतलब अगर मैंने 30 मिनट फोन देखा अपना तो उसके बाद में मुझे टाइमर लगा के देखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, टाइमर लगाना है हमें। हम जब भी रील्स देखते हैं हम 1.5 घंटा खराब कर देते हैं और हम भूल जाते हैं, तो टाइमर लगाइए आप। 30 मिनट बाद हम 30 फीट दूर देखेंगे, विच मीन्स 6 से 9 मीटर 30 सेकेंड के लिए, तो हमारी आंखें ठीक होंगी, उसमें जो स्ट्रेन पड़ रहा है, जो ड्राइनेस हो रही है वो ठीक होगा, प्लस जो इनअटेंशन हमने कॉज किया है वो ठीक करेगा। ये चीजें खत्म करने के लिए नहीं है इंटरनेट एडिक्शन, पर उसकी उसकी जो हानिकारक प्रभाव है हमारे दिमाग पे, वो कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। अब देखिए, टेक्नोलॉजी का दौर है, इस दौर में हम कैसे अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ भी रहें और नेचर के भी साथ रहें, इस दोनों का तवाजुन कैसे हम बरकरार रखें?
0: मुझे लगता है व्हेन यू हैव वर्क, आपको पास जब काम है उस समय काम करिए, और जिस समय काम नहीं है उसके बारे में तकल्लुफ, अपने दिमाग को, जहन को शांति दीजिए,
1: शांति दीजिए।
0: यू नीड टू हैव मैंडेटरी ब्रेक्स
1: जी।
0: एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं खुद करती हूँ, मैं जब अपने मरीज देखती हूँ मैं 100% डेडिकेटेड हूँ, पर जब आप अपने मरीज देखने के बाद में आपकी छुट्टी है तो शांति दीजिए इस दिमाग को, अच्छा टाइम इंजॉय करिए, कुछ अच्छे पल बनाइए अपनी जिंदगी में अगर नहीं है तो, क्योंकि जब आप आगे जाके मतलब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होगे, या आज से 2 साल 4 साल बाद देखोगे और याद करोगे कि मैं वहां उस जगह से निकला था, तो वो आपको एक खुशी दे जाएंगे।
1: बिल्कुल। चूंकि आपका ताल्लुक, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दरसो तदरीस से भी है, यानी आप टीचर भी हैं, माँ भी हैं और इलाज भी करती हैं, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि अगर हुकूमत को या किसी तालीमी इदारे को, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, अगर कोई मशवरा देना हो कि बच्चों को किस तरीके से एक तरफ किया जाए, तो क्या कहेंगी आप?
0: देखिए, कोविड ने हमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें दी और बुरी चीज़ें दी हैं, मैं बिल्कुल मानती हूँ, पर मेरा ये मानना है CBSE जो है, करिकुलम जो बोर्ड है, वो काफ़ी कोशिश कर रहा है बच्चों के समझने, वो समझता है बच्चों को, वो उनको चीज़ों को कम करने की कोशिश करता है, पर मुझे लगता है कोविड के बाद में एक दौर सा आ गया है बच्चों को स्क्रीन टाइम अवेलेबल करवाने का। स्मॉग हो रहा है दिल्ली में, हम दिल्ली में हैं, स्मॉग हो रहा है, ऑनलाइन क्लासेस करेंगे
1: जी।
0: एक नर्सरी, LKG और फर्स्ट क्लास का बच्चा, जिसको हम चाहें कोशिश करें, तो कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती बुनियादी ढांचा नहीं होना चाहिए, फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है, पर उस 15 दिन में टीचर कम से कम एक मैसेज लिख सकती है कि बच्चे को इतना काम करवा दिया जाए, उसको वो 3 घंटे का स्क्रीन टाइम एक 5 साल के बच्चे को देने की जरूरत नहीं है। हम एडिक्टेड ही मान लीजिए, हमारा काम इसके बिना नहीं चलता। हमारी मीटिंग्स हैं जो यहाँ से फिर केरला

0: तक हो रही हैं या आउटसाइड इंडिया हो रही है, उसके लिए तो ठीक है
1: जी,
0: लेकिन बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं
1: बिल्कुल,
0: उनका एटलीस्ट पांचवी क्लास तक, उनका मुझे नहीं लगता कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए।
1: बहुत शुक्रिया आपका, और मैं भी इस बात की तायद करता हूँ और मैं भी ये कहता हूँ कि छोटे बच्चों को तो ऑनलाइन क्लास होनी ही नहीं चाहिए, और इनफैक्ट मैं तो इसके बिल्कुल ऑनलाइन क्लास के खिलाफ ही हूँ, बिल्कुल इसकी मुखालफत ही करता हूँ।
0: बच्चा पढ़ता नहीं है, उसकी वजह से मेरे पास कोविड के बाद में बहुत सारे पेरेंट्स आए, और आप मानोगे नहीं, बहुत सीनियर लेवल के लोगों के पेरेंट्स आए, मतलब लाइक जो जज हैं और यू नो मिनिस्ट्री में है, कि हमारे बच्चे को हमने आईपैड दिया था कोविड में पढ़ने के लिए, और हमारी ड्यूटी कोविड में बिकॉज इमरजेंसी ड्यूटीज थी तो हम घर भी नहीं आ पाते थे, क्वारंटाइन होता था। उसके बाद में मेरा बच्चा जो एकेडमिकली मतलब अच्छे टॉप 5 टॉप 10 में था, आज वो आईपैड, मैं जब आता हूँ तो वो आईपैड में पढ़ रहा होता है, जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकला वो गेम खेल रहा है। तो कोविड ने हमें ये एक सौगात दी है,
1: तो अच्छी भी और बुरी भी है।
0: बुरी भी।
1: आखिर में आप बच्चों और नौजवानों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी कि वो टेक्नोलॉजी के इस दौर में टेक्नोलॉजी के साथ भी रहें और अपने करियर को या अपने आप को भी बना सकें? मैं करियर से ज़्यादा अपने आप की बात करूँगा कि वो अपने आप को भी बना सकें।
0: मुझे लगता है कि इंसान के लिए वो खुद ज़रूरी है, पर्सनल इम्पोर्टेंस ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट है, इररिप्लेसेबल है, नीड ऑफ द आवर है, लेकिन आप अपने आप को ये बात समझने की कोशिश करें, किसी भी चीज़ को अगर हम नाप तोल के यूज़ करेंगे तो हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को एक साथ सामंजस्य से बना पाएंगे।
1: जी, तो बहुत शुक्रिया सामईन कराम, आज की गुफ्तगू से ये बात वाज़ा हो जाती है कि मोबाइल और इंटरनेट का बेजा इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों की सेहत के लिए संगीन खतरात पैदा कर सकता है, मगर हम वक्त की पाबंदी, मुस्बत सरगर्मियों की तरफ रुझान और वालदैन और असाज़ा की रहनुमाई को अपना लें तो इस मसले पर हम काबू पा सकते हैं या पाया जा सकता है। हम डॉक्टर किरण के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी बसीरत और तजुर्बे से हमें आगाह किया। उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगु से रहनुमाई हासिल करेंगे और अपनी ज़िंदगी में सेहतमंद तब्दीलियाँ भी लाएंगे। इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम उर्दू मजलिस यहीं ख़त्म होता है। डॉक्टर साहिबा, आप हमारे दावत पे स्टूडियो में तशरीफ़ लाई, हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह तशरीफ़ लाती रहेंगी। सामीन, हम आपको बताते चले कि इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतज़ार सैफ़ी ने, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और मेहमानों के साथ, कुछ और मौजूआत के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज धर्मेंद्र और
2: प्रतीक आनंद
1: का नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: आज खेलों की बात करें तो निश्चित रूप से आईपीएल के दिलचस्प मुकाबलों की कहानी है, साथ ही बैडमिंटन की भी रिपोर्ट है। बात हम करेंगे रोविंग की भी, बात करेंगे सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की भी और साथ ही साथ बैडमिंटन की भी। तो शुरुआत करते हैं आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल के आज से मुकाबले नहीं हो रहे हैं बल्कि आज बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। सीएसके का सामना होना है और सीएसके के लिए बहुत कुछ दांव पर होगा जीटी के खिलाफ। सुनते हैं पहले कल के मैच के परिणाम के साथ साथ आज के मैच का पूर्वावलोकन।

कल ईडन गार्डन्स पर कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया। मुंबई इंडियंस की टीम 20 ओवरों में 8 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। वर्षा से प्रभावित इस मैच में टीम का रन रेट 7.35 रहा, जो इस सीजन 20 ओवर पूरे खेलने वाली टीमों में तीसरे सबसे खराब स्कोर रहा। इस मैच में कोलकाता के गेंदबाजों का दबदबा रहा। मैच की शुरुआत बेहद खराब रही। मुंबई पावर प्ले के भीतर ही अपने 4 अहम बल्लेबाजों को खो दिया। रायन रिकल्टन 6 रन बनाकर कैमरन ग्रीन की गेंद पर आउट हुए, जहां मनीष पांडे ने एक शानदार कैच पकड़ा। रोहित शर्मा 15 रन बनाकर सौरभ दुबे का शिकार बने। नमन धीर बिना खाता खोले ग्रीन की गेंद पर आउट हो गए और सूर्य कुमार यादव भी 15 रन बनाकर चलते बने। सूर्य कुमार यादव का इस सीजन बल्लेबाजी औसत 17.5 रहा है, जो उनके आईपीएल करियर में दूसरा सबसे खराब औसत है। इस तरह शुरुआती 6 ओवरों में मुंबई दबाव में आ गई। मध्य क्रम में तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या ने पारी को संभालने की कोशिश की। मुंबई की सबसे बड़ी साझेदारी तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच 49 गेंदों पर 43 रन की रही, लेकिन 5.26 के रन रेट से बनी ये साझेदारी इस सीजन 30 से ज्यादा गेंद खेलने वाली साझेदारियों में दूसरी सबसे धीमी है। अंत के ओवरों में विल जैक्स ने 14 रन और कॉर्बिन बॉश ने नाबाद 32 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। बॉश की यह पारी मुंबई के लिए सबसे तेज रही। बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी की, तो ग्रीन और सौरभ की अगुवाई में

केकेआर की उम्दा गेंदबाजी देखने को मिली। कोलकाता के लिए कैमरन ग्रीन ने सबसे प्रभावशाली गेंदबाजी की। उन्होंने 3 ओवरों में 23 रन देकर 2 विकेट लिए और 9 गेंदें डॉट डाली। यह पहली बार है जब ग्रीन ने आईपीएल में एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले। वहीं सौरभ दुबे ने अपने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। स्पिन विभाग में सुनील नरेन ने 4 ओवरों में सिर्फ 13 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 28 रन दिए। बड़ी ही किफायती गेंदबाजी रही। कार्तिक त्यागी ने भी 4 ओवर में 37 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। कोलकाता की अनुशासित गेंदबाजी के सामने मुंबई के बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। ग्रीन और सौरभ की शुरुआती सफलता ने मुंबई पर दबाव बनाए रखा, जिससे पूरी टीम 20 ओवर में गति नहीं पकड़ पाई। इसके बाद कोलकाता के बल्लेबाजों ने 148 रन का पीछा करते हुए तेज शुरुआत करने की कोशिश की, मगर 7.1 ओवरों में 54 रन पर 3 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। फिर मनीष पांडे और रॉबमैन पवल के बीच 41 गेंदों में 64 रन की साझेदारी हुई, जिसने केकेआर को मैच में बनाए रखा। अंत में रिंकू सिंह ने 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई और केकेआर की क्वालिफिकेशंस की उम्मीदों को बनाए रखा।

अब नजर डालते हैं आज के मैच पर। अहमदाबाद में आज गुजरात टाइटंस के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की चुनौती होगी। यह दोनों टीमों का प्रतियोगिता का आखिरी मैच होगा। चेन्नई के लिए ये मैच बेहद अहम है। टीम अगर आज हार जाती है तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। वहीं गुजरात के पास मौका है मैच जीतकर टॉप टू में फिनिश करने का। पिछले साल जिस टॉप टू फिनिश से वो चूक गए थे। अब तक जीटी और सीएसके के बीच 9 मुकाबले हुए हैं, जिसमें जीटी ने 5 मैच जीते हैं जबकि चेन्नई ने भी 4 मैच जीते हैं। ये आंकड़ा बताता है कि आज का मैच बेहद रोमांचक होगा। बात करें गुजरात के बल्लेबाजों की तो शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात के लिए 500 से अधिक रन बनाए हैं। दोनों अच्छी फॉर्म में हैं। गेंदबाजी में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा ने 13 मैचों में 21 विकेट लिए हैं। वहीं बात करें चेन्नई के लिए, गायकवाड़ का इस आईपीएल में स्ट्राइक रेट 120.68 का रहा है। शुरुआती मैचों में फॉर्म से जूझ रहे चेन्नई के कप्तान को कुछ मैचेस से लय प्राप्त हुई है। गेंदबाजी में भी अंशुल कंबोज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 मैचों में 20 विकेट लिए हैं।

आईपीएल 2026 में एक हिट थ्रिलर फिल्म का सारा एलिमेंट देखने को मिल रहा है। सांसें रोक देने वाले मुकाबले हैं, हर पल बढ़ता रोमांच है, क्लाइमेक्स पर सब कुछ उलट पलट कर देने वाले मुकाबले हैं। सभी टीमों के लिए लीग का एक एक मुकाबला बचा हुआ है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि प्लेऑफ की चौथी टीम कौन सी होगी। प्लेऑफ का रोमांच और बढ़ गया है। अभी तक की बात करें तो कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर अपनी प्लेऑफ उम्मीदें जिंदा रखी। टीम के अब 13 मैचों में 13 पॉइंट्स हो गए और वह छठे स्थान पर पहुंच गई है। टीम का आखिरी मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से है। केकेआर को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए मैच जीतना होगा, साथ ही राजस्थान और पंजाब के हारने की भी उम्मीद करनी होगी। अब प्लेऑफ के चौथे स्थान के लिए राजस्थान, पंजाब, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला बना हुआ है। चेन्नई आज गुजरात टाइटन्स से भिड़ेगी और टीम को हर हाल में जीत चाहिए। चेन्नई 13 मैचों में 12 पॉइंट्स के साथ सातवें स्थान पर आ गई है। टीम को कोलकाता की जीत से एक पायदान का नुकसान हुआ है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 पॉइंट्स और प्लस 1.065 नेट रन रेट के साथ पहले स्थान पर बनी हुई है। टीम पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। अगर नेट रन रेट में बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो आरसीबी का क्वालिफायर एक खेलना तय है। गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद 16-16 पॉइंट्स के साथ और नेट रन रेट के आधार पर दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। गुजरात का आखिरी मुकाबला चेन्नई से है। टीम अगर इस मैच में जीत दर्ज करती है तो 18 पॉइंट्स के साथ क्वालिफायर एक खेल सकती है। वहीं हैदराबाद का सामना बेंगलुरु से होगा। एसआरएच को टॉप टू में जगह बनाने के लिए आरसीबी को बड़े अंतर से हराना पड़ सकता है। राजस्थान रॉयल्स 14 पॉइंट्स के साथ चौथे स्थान पर बनी हुई है। टीम का आखिरी मुकाबला मुंबई इंडियंस से है। 24 मई को अगर राजस्थान जीतती है तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएगी और प्लेऑफ में जगह पक्की कर लेगी। पंजाब किंग्स 13 पॉइंट्स के साथ पांचवें स्थान पर है। टीम लगातार 6 मैच हार चुकी है। पंजाब को प्लेऑफ की उम्मीदें जिंदा रखने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत दर्ज करनी ही होगी, साथ ही राजस्थान के हारने की भी उम्मीद करनी होगी। दिल्ली कैपिटल्स 12 पॉइंट के साथ आठवें स्थान पर खिसक गई है। टीम का नेट रन रेट -0

8.71 है। दिल्ली को आखिरी मुकाबले में कोलकाता के खिलाफ बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और दूसरी टीमों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स पहले टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी हैं। मुंबई 8 पॉइंट्स के साथ 9वें जबकि लखनऊ 8 अंक लेकर आखिरी स्थान पर है। मुंबई का आखिरी मैच राजस्थान से जबकि लखनऊ का पंजाब से होगा। हम आपको बता दें कि अभी ऑरेंज कैप राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी के सिर पर है, जबकि पर्पल कैप की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार, जो भारत के अनुभवी गेंदबाज रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं।

और आईपीएल के बाद अब बात एथलेटिक्स की। प्रचंड गर्मी के बीच देश के शीर्ष एथलीट झारखंड की राजधानी रांची में कल से 25 मई तक 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में आगे निकलने के लिए अपने पसीने की एक एक बूंद से ट्रैक को सींचेंगे और फिर वहां से पदक पैदा होगा। भारतीय एथलेटिक्स संघ के निर्देशानुसार झारखंड एथलेटिक्स संघ और झारखंड सरकार के खेल विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 700 खिलाड़ी और 150 तकनीकी पदाधिकारी भाग लेने जा रहे हैं। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में ओलंपियन और एशियाई पदक विजेता खिलाड़ी भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस आयोजन से एक तरफ जहां झारखंड को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी, वहीं ये प्रतियोगिता खिलाड़ियों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसी प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, ग्लासगो और एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 जापान के लिए भारतीय टीम का चयन किया जाएगा। रांची में इस स्तर की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। रांची में होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में उत्साह का जबरदस्त माहौल है। इस आयोजन से झारखंड की खेल प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस आयोजन में कई नामी गिरामी एथलीट भाग ले रहे हैं। पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर में जाने माने एथलीट अनिमेश कुजूर और अभय सिंह की भागीदारी होगी। 400 मीटर दौड़ में राजेश रमेश और विशाल टीके की भागीदारी होगी। 800 मीटर दौड़ में मोहम्मद अफजल और कृष्ण कुमार मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। अजय सरोज और सुनील डावर 1500 मीटर के प्रमुख एथलीट होंगे। 5000 मीटर और 10000 मीटर की लंबी रेस में कार्तिक करकेरा पर मुख्य नजर होगी। 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस शीर्षे और कृषक एम मुख्य एथलीट होंगे। इसी तरह 400 मीटर हर्डल में रुचित मोरी, यशस पलाक्सा, जुबीर मदारी और संतोष टी एक दूसरे को तगड़ी चुनौती देंगे। जहां तक जंप इवेंट्स की बात है, हाई जंप में सर्वेश कुशारे और आदर्श राम जैसे सितारों की चुनौती होगी। वहीं पोल वॉल्ट में देव मीना, कुलदीप कुमार और जी रीगन छलांग लगाएंगे। लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर, पूर्व नेशनल रिकॉर्ड होल्डर जैस्मिन एल्ड्रीन, सरुण पैसिंग और एस लोकेश अपनी चुनौती रखेंगे। ट्रिपल जंप में अब्दुल्ला अबूबकर, प्रवीण चित्रवले और सेलवा प्रभु अपना दम झोंकेंगे। थ्रो स्पर्धाओं में शॉटपुट में तेजिंदर पाल सिंह तूर और समरदीप गिल अपनी बाजुओं का दम दिखाएंगे। हैमर थ्रो में दमनीत सिंह और आशीष जाखड़ की ताकत का जोर देखने को मिलेगा। जेवलिन थ्रो में रोहित यादव और सचिन यादव मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। डेकाथलान में तेजस्विन शंकर और जसबीर नायक के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। महिला एथलीटों में 400 मीटर दौड़ में ऐश्वर्या मिश्रा, विथिया रामराज, देवयानी बाजाला और रशदीप कौर शिरकत करेंगी। पूजा महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेंगी। 1500 मीटर दौड़ में अन्य एथलीटों के साथ साथ पूजा और अंकिता ध्यानी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। 5000 मीटर दौड़ में सीमा, सोनम परमार और रवीना मुख्य धावक होंगी। 400 मीटर हडल में विथ्या रामराज और अनुआर के बीच तगड़ी प्रतिस्पर्धा होगी। 3000 मीटर स्टीपल चेज में अंकिता ध्यानी पूरा दम लगाएंगी। 10000 मीटर की दौड़ में महिला वर्ग में मुनीता प्रजापति के प्रदर्शन पर सबकी नजर होगी। प्रियंका और रवीना भी इस स्पर्धा में शामिल होंगी। लॉन्ग जंप के महिला वर्ग में मुबासिना मोहम्मद, शालिनी सिंह और ईएनसी सोजन आकर्षण का केंद्र होंगी। महिला हाई जंप में अभिनया एस शेट्टी, रीत राठौर और ख्याति माथुर पर नजर होगी। पोल वॉल्ट में बारानिका एलंगवन की चुनौती दिखेगी। ट्रिपल जंप में निहारिका वशिष्ठ, पूर्वा सावंत और निमाशा डायमा के बीच कड़ा मुकाबला होगा। डिस्कस थ्रो में सीमा एंतिल और कृष्णा जयशंकर की बाजुओं का दम देखने को मिलेगा। जेवलिन थ्रो में अन्नु रानी तो होंगी ही, साथ ही करिश्मा सानिल भी पूरा ताकत लगाएंगी। 10 किलोमीटर की रेस वॉक में रवीना और प्रियंका गोस्वामी मुख्य आकर्षण होंगी। वहीं हेप्टाथलॉन में अन्य एथलीटों के साथ साथ अनामिका और पूजा के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर कल से देश के शीर्ष एथलीटों का जमावड़ा झारखंड की राजधानी में देखने को मिलेगा, जिसमें कोई आगे निकलेगा तो कोई पीछे छूट जाएगा।

0: अब बात कुआलालंपुर में चल रहे छठे सेपेक्टो क्रॉ वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय प्रदर्शन की। भारत की टीम रेगु ग्रुप बी के अपने दोनों मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। कल मेजबान मलेशिया के हाथों एक तरफा मुकाबले में 3-0 से हारने वाली भारतीय टीम आज म्यांमार के हाथों भी पराजित हो गई। भारत को इस मैच में 1-2 से शिकस्त मिली। आज खेले गए इस मैच में R1 मुकाबले में भारत 2-0 से पिछड़ गया। पहले सेट में भारत को 6-15 से हार मिली। दूसरे सेट में उसने संघर्ष किया, फिर भी 13-15 से मात खानी पड़ी। R2 में भारतीय टीम थोड़ी बेहतर नजर आई। इसके पहले सेट में संघर्ष के बाद भारतीय टीम को 11-5 से हार मिली। दूसरे सेट में स्कोर भारत के खिलाफ 9-15 का रहा। R3 में कांटे का मुकाबला देखने को मिला। पहला सेट भारत ने अपने नाम किया और 15-11 के स्कोर से जीत हासिल की। दूसरे सेट में म्यांमार ने पलटवार किया और स्कोर 8-15 का रहा, लेकिन तीसरे सेट में फिर भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया और यह सेट 15-12 से अपने नाम किया। हालांकि जीत भारत को अगले दौर में पहुंचाने के लिए काफी नहीं रही। इस तरह से रेगु ग्रुप से लगातार 2 हार के बाद भारतीय टीम की विदाई हो गई। अब कुछ तकनीकी जानकारी सेपेक्टेक्रा से। एक टीम इवेंट मैच में 3 रेगु मैच होते हैं। हर देश अपनी 3 अलग रेगु उतारता है। एक रेगु में 3 खिलाड़ी होते हैं, एक टेकोंग, एक फीडर, एक किलर या स्ट्राइकर। हर रेगु का मैच बेस्ट ऑफ 3 सेट में होता है। 15 पॉइंट का सेट 2 पॉइंट से जीतना जरूरी है। टीम मैच जीतने के लिए 3 में से 2 रेगु जीतने होते हैं। और दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि भारतीय रोविंग दल की एशियाई खेलों को लेकर तैयारियों और उम्मीदों को लेकर साई की विशेष प्रेस वार्ता दिल्ली में आयोजित की गई, और इसमें क्या कुछ खास रहा ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी शाहिद आजमी।
1: आज बात होगी उस खेल की जहां शोर कम होता है लेकिन मेहनत और जुनून की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय रोइंग टीम की। शांत पानी पर तेजी से दौड़ती नावें, खिलाड़ियों की एक जैसी लय और हर स्ट्रोक के साथ पदक का सपना। भारतीय रोइंग अब एशिया में

0: सभी सदस्यों ने।
1: ये फरमाइश हमारे पास में आई है खेल बाजार पानीपत से भेजने वाले नरेश मल्होत्रा नीटू और इनका पूरा परिवार। शिवाजी कॉलोनी रोहतक से फरमाइश भेज रहे हैं पीयूष सिक्का और इनका पूरा परिवार। पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से फरमाइश भेज रहे हैं अनिल मोहन और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है जटवाड़ा गाजियाबाद से भेजने वाले हैं शीश पाल अकेला और इनका पूरा परिवार। जलालाबाद वेस्ट से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश गगनेजा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं पीएस नहावकर और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है मलकापुर से भेजने वाले हैं नारायण इंगले और इनका पूरा परिवार। और ये एसएमएस हमें मिला है भाई ग्राम पंचायत बढ़ेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं बलकरण वर्मा और इनका पूरा परिवार। वडिंग खेड़ा पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं मिंटू टॉम्स और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है भाई गांव माइचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से भेजने वाले हैं कंचित शर्मा सतपाल शर्मा मास्टर बनी सिंह मास्टर देवेंद्र सिंह सर्वेश गिरी महाराज कुमारी तनु शिव कुमार शर्मा और पवन शर्मा की हमें ये फरमाइश मिली जो सुनना चाहते हैं नीलम चौधरी की आवाज़ में ही रागनी। ये फरमाइश हमारे पास में आई है पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजीनगर से भेजने वाले हैं राजेश सावले पाटिल और इनका पूरा परिवार।
0: ये फरमाइश हमारे पास आई है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से भेजने वाले भाई हैं सैयद मसरूर और इनके पूरे परिवार के सभी सदस्य। गांव कलाना तहसील भदरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भी फरमाइश भेजी है विक्रम कड़वासरा और परिवार के सभी सदस्यों ने। और ये फरमाइश हमारे पास भोला कॉलोनी घरौंडा जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश भेजी है विजेंद्र कुमार जयजान और परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर नीलम चौधरी की आवाज़ में ये रागनी।

0: सुन नए नाथ मेरी बात, या चंद्र किरण जोगी के तने तन मन धन से ऐसा वैसे नीचे न कमद लटका दी चढ़ जा क्यों वार लगा वैसे। चंद्र किरण के किस्से की और भाई बाजे भगत की रची हुई रचना, बहुत ही बढ़िया रागनी हमने इस किस्से से अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाई।
1: बिल्कुल, और अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं उपेंद्र राणा, इनके लिए भी हमारे पास भाई SMS आ गए हैं। और ये SMS हमें मिला है हिंदुस्तान रेडियो मित्र वन्य बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, भेजने वाले हैं विजेंद्र विश्वकर्मा इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं रामशरण विश्वकर्मा इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई गाँव लहलौड़ा जिला बागपत से, भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापत और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से, भेजने वाले हैं लालगिरी गोस्वामी और उनका पूरा परिवार। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से भी हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, भेजने वाले हैं ताज मोहम्मद अंसारी और इनका पूरा परिवार। और पहले बहन ये ऐसे

0: समय मिला है जसपुर उत्तराखंड से भेजने वाले रियासत हुसैन सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार।
1: अतुल भाई, ये फरमाइश हमारे पास आई है सूरतगढ़ राजस्थान से। भेजने वाले भाई हैं भूपेंद्र मिशन और इनके परिवार के सभी सदस्य। सादुल शहर राजस्थान से भी हमें फरमाइश भेजी है राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ ने। ये फरमाइश हमारे पास कलानौर हरियाणा से आई है और भेजने वाले भाई हैं नरेंद्र शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश आई है खिलेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी सदस्यों की। ये फरमाइश हमें भेजी है हनुमानगढ़ से और भेजने वाले भाई हैं सुल्तान सिंह तरार और परिवार के सभी सदस्य। बहरवाला खुर्द सिरसा से हमें फरमाइश भेजी है बलवंत जाखड़ और परिवार के सभी सदस्यों ने। दादरी गेट भिवानी से भी हमें फरमाइश भेजी है कृष्ण मेहरा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
0: अनारकली बाजार जगराओं से फरमाइश भेज रहे हैं सुनील पाठक और उनका पूरा परिवार। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से फरमाइश भेजने रमेश चंद्र चौहान का पूरा परिवार। दतरंगी से फरमाइश भेज रहे हैं भागवत वर्मा इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमें भेजी है भाई जावेद अंसारी उनके पूरे परिवार ने। ये फरमाइश आई है भाई महिपाल सिंह शौरान की गाँव बड़दू चैना जिला भिवानी हरियाणा से। और ये फरमाइश आई है हमारे पास में भाई रावर करनाल से भेजने वाले हैं ज्ञानभूषण शर्मा उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है हमारे पास में राजकोट गुजरात से भेजने वाले हैं रश्मि झरना उनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश आई है नूर महल सीतामढ़ी बिहार से भेजने वाले मुर्शद जहानाज और उनका पूरा परिवार। तो सुनवाते सभी की फरमाइश पर उपेंद्र राणा की आवाज़ में ये रागनी।

0: पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे उपेंद्र राणा की आवाज में ये
1: रागनी,
0: रागनी।
1: और ये किस्सा था किरणमयी और पृथ्वी सिंह का। और भाई बहुत ही बढ़िया रागनी हमने अपने सभी श्रोताओं को सुनवाई। और इसी के साथ ही आज का हमारा ये ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा कि ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कुअन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो

0: देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
1: पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि वे नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। भारत ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया है। नई दिल्ली में आज 11वीं वार्षिक ब्रिक्स आतंकरोधी कार्य समूह की बैठक में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आतंकियों को पनाह देने और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता पर बल दिया। चौथा भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए स्थगित कर दिया गया है। ये सम्मेलन 28 से 31 मई तक नई दिल्ली में होना था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। गुजरात पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम राम, राम। तो पायल बहन हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और भाई आज हम अपने कार्यक्रम में लेकर के आए हैं अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी, धान की उन्नत किस्में और उनका नर्सरी प्रबंधन।
1: बिल्कुल। और देखिए इस जो ये बातचीत है, इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर आयुषी पालीवाल, जो कि शैष्य वैज्ञानिक हैं पूसा नई दिल्ली से, और इनसे बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल।
0: बिल्कुल। तो पायल बहन पहले लेते हैं ये थोड़ी सी जानकारी।
2: नमस्कार। किसी भी फसल के उत्पादन में उसके उन्नत बीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है, और आज हम बात करेंगे बासमती धान की उन्नत किस्में और नर्सरी प्रबंधन की, और इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर आयुषी पालीवाल से, जो कि सस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हैं। डॉक्टर आयुषी पालीवाल जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो आज हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि धान की कौन कौन सी उन्नत किस्में पूसा द्वारा निकाली गई हैं, और उसमें से विशेष तौर पे आज आप बासमती धान की बात करेंगे, और उसका जो नर्सरी प्रबंधन भी कैसे किया जाए उसके बारे में भी बताइए।
3: आज मैं कुछ उन्नत किस्मों के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो गत वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है
2: जी।
3: जो 2014 से 2023 तक जो भी किस्में विकसित की गई है, जो न केवल सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेश में भी बहुत ही अपना दबदबा जमा रही है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ पूसा 1121 की। किसान साथियों, पूसा 1121 हमारी राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं पंजाब के लिए बहुत ही उपयुक्त किस्म है, जिसकी पैदावार 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक है और जो 140 दिन में परिपक्व होकर तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता ये है कि इसके लंबे सुडोल दाने, पकने के उपरांत 4 गुना आयतन विस्तार एवं 20 से 25 मिलीमीटर तक लंबाई इस दानों की होती है। किसान भाइयों, ये विदेश में भी काफी कमाई कर रही है पूसा 1121।
2: जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा

0: कि ये विदेश में भी ज्यादा कमाई कर रहे हैं, यानी जो विदेशी मुद्रा है उसको भी ला रहे हैं। तो
1: जी,
0: इसकी क्या खूबी है, क्या इसमें कोई खुशबू भी है?
1: मैंने जैसा कि बताया, इसकी बहुत ही अहम विशेषता ये है कि ये पकने के उपरांत 4 गुना आयतन विस्तार करती है। मतलब कि ये कि जब भी विदेशी मार्केट्स में ये बिकने जाती है, तो एक तो होता है हमारा पारंपरिक धान जिसके दाने छोटे होते हैं, इसके दाने पकने के उपरांत 4 गुना विस्तार बढ़ा देते
0: यानी
1: हैं।
0: लंबे हो जाते हैं।
1: बिल्कुल, जो देखने में आज हमारे ग्राहकों को कैसे धान पसंद है, कैसे चावल पसंद है, जो लंबे पककर तैयार हो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, इसीलिए ये विदेश में बहुत कमाई कर रही है।
0: इसके अलावा और कौन कौन सी किस्में हैं?
1: तो दूसरी किस्म पर मैं आती हूँ, पूसा बासमती 1509, जो पश्चिमी यूपी और दिल्ली के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जिसकी पैदावार किसान भाइयों 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक जाती है, और जो मात्र 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है, जो पूसा 1121 से भी कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता ये है कि ये अर्ध बोनी होती है, अधिक लंबे एवं सुडोल दाने। किसान भाइयों, इसका एक और विकल्प है पूसा बासमती 1609, जो कि यूपी, दिल्ली, पंजाब के लिए उपयुक्त है। इसकी पैदावार सिर्फ 46 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो भी 120 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। लेकिन इसमें एक विशेष गुण है, किसान भाइयों ध्यान दें, ये ब्लास्ट रोग प्रतिरोधक क्षमता लेकर किस्म विकसित की गई है। जो मैंने 1509 बताई पूसा बासमती, उसमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, लेकिन उसकी पैदावार ज्यादा है पूसा बासमती 1609 से। अब बात करती हूँ पूसा बासमती 1592, जो कि पूसा सुगंध 5 की उन्नत किस्म है। किसान भाइयों, ये बैक्टीरियल ब्लाइट, जो कि मैंने आपको अभी एक बीमारी बताई जो धान में बहुत आती है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता इसके अंदर है, जो मात्र 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार 47.3 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है। किसान भाइयों, इसके अलावा एक पूसा बासमती 1692, जो अभी बहुत ज्यादा चलन में है, जो कि हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत उपयुक्त किस्म है। इसकी पैदावार 52.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रहती है, और ये मात्र 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये भी अर्ध बोनी है, शीघ्र पकने वाली है और अत्यधिक उपज देने वाली किस्म है। ये लगाने से मात्र 115 दिनों में आपके पास बहुत ही अच्छी पैदावार 52.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, जैसा मैंने बताया, वो पककर तैयार हो जाएगी। इसके अलावा कुछ और किस्में भी हैं, जैसे सहभागी धान, जैसे कि अगर कहीं पे सूखा पड़ता है तो ये सूखे के प्रति बहुत ही सहनशील है। उसकी अगली है CSR 30, जो कि लवणीय भूमि के लिए बहुत उपयुक्त है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर जगह सिंचित नहीं होती, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी भी बनाई गई है जो कि सूखे में सहनशील है, जैसे सहभागी धान। तो किसान साथियों, मैं यही सुझाव दूंगी कि अपने क्षेत्र की जलवायु एवं मिट्टी के अनुसार आप किस्म चुनें, प्रमाणित बीज का ही उपयोग करें, समय पर नर्सरी और रोपाई करें, संतुलित उर्वरक एवं जल प्रबंधन अपनाएं।
0: जैसे आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसी भी किस्में हैं जहाँ कम पानी बरसता है, वहाँ के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन क्या धान में कोई ऐसी भी किस्म विकसित की गई है? क्योंकि धान की फसल ज़्यादातर जब तैयार होती है गिर जाती है, क्या उसको मजबूती प्रदान के लिए कोई किस्में तैयार की गई हैं?
1: जी, जैसा कि मैंने बताया कि सहभागी धान वो काफी अच्छी रहती है सूखे में, तो वो आप किसान भाई चुन सकते हैं सूखे में सहभागी धान। और इसके अलावा CSR 30 भी है, जो कि अगर आपकी मिट्टी उपयुक्त नहीं है, अगर वहां पर बहुत लवणीय या क्षारीय मिट्टी है, तो आप इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। उसके अलावा सिंचित क्षेत्र में पूसा बासमती की वेराइटीज काफी अच्छी रहती है।
0: जो धान की नर्सरी डालना चाहते हैं हमारे किसान भाई, वो किन बातों का ध्यान रखें?
1: देखिए किसान भाइयों, जो जल्दी पकने वाली किस्म है, जो 120 से 25 दिनों तक जो पकने वाली किस्म है, उसकी जो नर्सरी प्रबंधन है, उसका सबसे उपयुक्त समय है 20 जून तक। अगर आप अपनी नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 20 जून तक आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। ज्यादातर किसान भाई गीली क्यारी विधि से बुवाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले खेत तैयार किया जाता है, उसके बाद पानी भरा जाता है, और उसके बाद कल्टीवेटर, पडलर या देसी हल से गारा तैयार किया जाता है। अगर आपने गारा तैयार कर लिया है तो अब क्यारियां बनाने की बात करते हैं। क्यारियां बनाने के लिए 1.25 मीटर 1.25 मीटर चौड़ी क्यारी बनाना चाहिए, और उसके बाद में क्यारियों की लंबाई आप सुविधा अनुसार भी रख सकते हैं। मोटे तौर पर लंबाई 5 से 8 मीटर तक हो सकती है, और दो क्यारियों के बीच में 30 सेंटीमीटर की नाली रखनी चाहिए, क्योंकि ये नाली

या अत्यधिक जल निकासी करने का काम करेगी। इसमें श्रमिक भाई जो है वो खरपतवार नियंत्रण के लिए बैठ भी सकते हैं और साथ साथ में ये पानी लगाने का भी काम कर सकती हैं। जब गारा बनाया जाता है खेत में, तब उस समय खाद और उर्वरक देना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आपको 700 से 800 क्विंटल प्रति 1,000 वर्ग मीटर में आपको गोबर की खाद जब गारा बना रहे हैं उसी समय डाल देनी है, क्योंकि जब भी हम नर्सरी का एरिया लेते हैं वो 1/10 एरिया होना चाहिए। अगर आप 1 हेक्टेयर का ले रहे हैं तो वो 1,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये एक पैमाना होता है नर्सरी का एरिया, आपको अगर निश्चित तौर पर डिसाइड करना है। उसके बाद में गोबर खाद डालते समय आपको 8 से 12 किलो यूरिया का प्रयोग करना है, उसके बाद 15 से 20 किलो सिंगल सुपर फास्फेट, फिर 5 से 6 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश, फिर 2 से 2.5 किलो जिंक सल्फेट। उसी के साथ जहां आप गोबर की खाद डाल रहे हैं उसी के साथ सभी को मिक्स करके जब गारा बना रहे हैं तभी आप उसमें मिला दीजिए। दूसरी तरफ इसी के साथ आपको बीज की तैयारी भी करनी होती है। बीज को तैयार करने का मेरा मतलब ये है कि बीजोपचार पर जाना। देखिए किसान साथियों, बीज उपचार करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आगे चलकर बहुत ही बीमारियां और कीट हमारे पौध को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहले बीज उपचार के लिए आप बाविस्टीन और स्ट्रेप्टोसाइक्लीन पानी में घोल बना ले। इन दोनों दवाइयों का बाविस्टीन की दर है 1 ग्राम प्रति लीटर। जैसे 10 लीटर पानी का अगर आपने घोल बनाया है तो उसमें 10 ग्राम बाविस्टीन घोल लें और उसी 10 लीटर में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लीन भी घोल लें और फिर घोल बना लें। इसमें 8 से 10 किलो बीज डाल सकते हैं। मोटे तौर पर रोपाई के लिए बीज की मात्रा 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक होती है, लेकिन ये महीन किस्मों के लिए है। अगर हम मोटी किस्मों की बात करें तो 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भी आपके बीज की मात्रा जा सकती है। तो जो बीज आपने दवाई में घोले थे उन्हें आप 24 घंटे तक उस दवाई के घोल में डुबो कर रखें। आपको 24 घंटे तक देखना है और उसके बाद में जब आप उस बीज को उस घोल से निकालें तो आप 4 से 5 घंटों के अंतराल में उस पे पानी का छिड़काव करें। जब आपने एक बार दवा में डाल दिए बीज, उसके बाद आपको टाट के बोरे के ऊपर आपको बीज बिछा लेने हैं और उसमें धूप नहीं लगने देनी है उनको। वापस से टाट के बोरे से उसको ढक देना है। 4 से 5 घंटे के अंतराल में आप उस पे पानी छिड़काव कर सके और आप पाएंगे कि 24 से 36 घंटों के बाद में उन बीज का अंकुरण हो चुका होगा। फिर आप उन बीज को रोपाई के लिए आप उसको छिड़क सकते हैं जो आपने गाढ़ा बनाया था उसके अंदर। उसके अंदर जब आपने बीज छिड़काव किए हैं तो पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है, तो अगर आपने छिड़काव कर दिया तो उससे पहले भी आप उसमें 2 से 3 सेंटीमीटर तक पानी रख सकते हैं या फिर आप हल्का सा पानी रोपाई के वक्त भी चला सकते हैं। किसान भाई, जब आपने रोपाई कर दी उसके बाद में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए नर्सरी के देखभाल का विषय सामने आता है। सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण। अगर मैं रासायनिक तरीके से बताऊं तो रासायनिक विधि से 120 मिलीलीटर मचेती जो ब्यूटा क्लोर है उसको 60 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 से 3 दिन के अंदर में छिड़काव करें। इससे आपकी जो खरपतवार है वो नियंत्रित हो जाएगी। उसके बाद में आगे चल के काफी बीमारियां और कीट भी आते हैं, जैसे तना छेदक, स्टेम बोरर जिसको बोलते हैं, एक पत्ती लपेटक कीट भी आता है। इसके लिए 2 मिलीलीटर क्लोरोपोरिफॉस पर लीटर पानी में आप एक घोल बना लें। ऐसा आप 60 लीटर घोल बनाएं और उसमें छिड़क दें। और इसके अलावा एक झंडा रोग जिसको बकाने रोग भी बोलते हैं, ये भी बहुत प्रचलित रोग है, इसमें बहुत आता है। और अगर आपकी पौधशाला में ये रोग आया है और अगर 1 से 2 पौधे इससे ज्यादा प्रभावित हो गए हैं तो आप सारे पौध को निकाल कर फेंक दें, क्योंकि ये रोग ऐसा है अगर एक बार आ गया तो ये अपने पग पसार लेता है आपकी पौधशाला में। अगर सिर्फ आपको 1 से 2 पौधे प्रभावित नजर आ रहे हैं तो आप उन 1 से 2 पौधों को हटाकर अपनी नर्सरी सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ दवा भी आप डाल सकते हैं। जब आप रोपाई करेंगे तब आप 1 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर पानी में घोल बना लें, फिर इसमें जड़ की तरफ से पौधे को डुबा कर रखें। 7 से 8 घंटे के बाद में आप वापस उसका रोपाई कर सकते हैं। बाविस्टीन इसमें बकाने रोग के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसान भाई, पानी कभी भी जब भी आपको पौधशाला में चलाना है तब आप दिन के समय पानी न दें, क्योंकि दिन के समय बहुत गर्मी पड़ती है और पानी गर्म हो जाता है, उससे आपकी फसल को बहुत नुकसान होता है। इसलिए पानी हमेशा शाम को चलाएं। अगर सुबह पानी लगाते हैं तो पानी बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए आपको पानी कब लगाना है? शाम को।

0: में आगे चल के पीलापन की समस्या भी बहुत देखने को मिलती है। देखिए, पौधे में पीलापन की समस्या दो कारणों से हो सकती है। पहला कारण ये है, या तो आपने गोबर की खाद उसमें नहीं डाली है, या फिर नाइट्रोजन की कमी हो गई है, यूरिया आपने सही तरीके से नहीं डाला है। और दूसरा जो बहुत मोटे तौर पर आता है वो इसका कारण ये है कि लोहे की कमी, नर्सरी में आयरन उसकी कमी मोटे तौर से देखी जाती है। सबसे पहले जो पीलापन है पत्तों का वो ऊपर से शुरुआत होगा, फिर नीचे के पत्ते पीले पड़ना स्टार्ट होंगे। अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो फिर पत्ते सफेद रूप में बदल जाते हैं, उसके बाद पत्ते भूरे हो जाते हैं और उसके बाद पूरा पौधा सूख जाता है। तो आपको सुनिश्चित करना होगा कि अगर लोहे की कमी आपको नहीं आने देनी है तो नर्सरी में पानी की मात्रा को बरकरार रखें। इससे ये होगा कि लोहे की कमी नहीं आएगी। अगर कहीं पे भी बीच में पानी कम पड़ता है तो लोहे की कमी हमेशा देखने को मिलती है, इसलिए पानी को सुचारू रूप से चलाए रखें। तो अंत में यही कहूंगी कि इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी पौध अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल आयुषी पालीवाल जी, निश्चित तौर पे आपने जिस तरीके से बताया कि धान की उन्नत किस्में और नर्सरी प्रबंधन किस तरीके से करें, और विशेष तौर पे आपने नर्सरी प्रबंधन पे अच्छा प्रकाश डाला, और हमारे किसान भाई इस जानकारी से फायदा उठाएंगे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो पायल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी अभी हमारे सभी किसान बहन भाइयों को मिली है बासमती धान की उन्नत किस्में और नर्सरी प्रबंधन के बारे में। इसकी जानकारी दे रही थी डॉक्टर आयुषी पालीवाल, सस्य वैज्ञानिक पूषा नई दिल्ली, उनसे बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। निश्चित रूप से हमारे जो किसान भाई हैं अब अपनी नर्सरी की तैयारी तो करेंगे ही पायल बहन।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि ये देखिए अब मई के आप अंतिम सप्ताह में कई बार हमारे किसान भाई अगेती जो धान की बिजाई करने के लिए जो है अपनी पौध तैयार करने शुरू कर देते हैं, और कुछ लोग जो जून के पहले सप्ताह में जा कर के करते हैं।
3: बिल्कुल,
2: और देखिए आज बहुत ही खुशी का दिन है हमारे सभी किसान भाइयों के लिए, और हम किसान भाइयों के लिए भी अत्यंत गर्व का विषय है और खुशी का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पायल बहन FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान देश के किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और कृषि विकास के लिए किए गए कार्यों का वैश्विक स्तर पर सम्मान है, इसके लिए हम उन्हें हार्दिक बधाई देते हैं।
3: बिल्कुल, और देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं जिनसे किसानों को सीधा लाभ मिला है अतुल भाई, और कृषि क्षेत्र में उनकी दूरदर्शी सोच और प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर FAO के प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित करना हम सभी किसानों के लिए गौरव का विषय है, और हम उन्हें इस उपलब्धि के लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए ये जो है ना आज पूरे किसान समुदाय के लिए ये गौरव का क्षण है पायल भाई।
3: बिल्कुल,
2: और ये जो सम्मान है ये हमारे पूरे देश के किसान भाइयों को भी मिला है उनके साथ साथ, क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं भाई उनका भी अथक प्रयास रहा है अपनी कृषि के अंदर।
3: प्रधानमंत्री जी ने हमेशा किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को आधुनिक बनाने तथा खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया है अतुल भाई, और जो AFO द्वारा दिया गया ये एग्रीकोला मेडल है उनके नेतृत्व में और कृषि क्षेत्र के प्रति उनका जो समर्पण है उसको प्रणाम है, एक तरह से हम उन्हें प्रणाम करते हैं।
2: बिल्कुल, और देखिए एक और छोटी सी जानकारी हम भी लेकर के आए हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार भी जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं।
4: आज मैं अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहूंगा। हम नहीं कहते, जमाना कह रहा है। अभी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को FAO जो संयुक्त राष्ट्र संघ का फूड के लिए एग्रीकल्चर के लिए वैश्विक संगठन है, उसने सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और ये इसलिए दिया है कि फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जो कदम उठाए हैं, न केवल भारत की बल्कि दुनिया की इस मामले में चिंता की है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो, गरीबी दूर हो, और उसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़े हमारे कृषि उत्पादों की, उसके लिए जो काम किया है, गरीबी दूर करने के लिए जो काम किया है, अलग अलग जो हमारे रिसर्च और शोध को बढ़ा के

0: एक तरह से पूरी दुनिया में कोई भूखा ना रहे, कोई गरीब ना रहे, इस दृष्टि से उन्होंने जो प्रयास किए हैं उसको पूरी दुनिया आज सराह रही है। भुखमरी समाप्त करने के लिए, गरीबी कम करने के लिए, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने जिस प्रतिबद्धता के साथ काम किया है उनको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सम्मान केवल उनका सम्मान नहीं है, ये सम्मान 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है, हमारे किसानों का सम्मान है, हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान है। लेकिन उनका नेतृत्व इतना उत्कृष्ट है कि वो हमको उस दिशा में प्रेरित करते हैं। श्री अन्न का ही उदाहरण देख लें, इसके पहले किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन ये तो सुपर फूड है श्री अन्न, और केवल देश के लिए नहीं दुनिया के लिए वो बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं और उनके नेतृत्व में दुनिया से भुखमरी मिटे और भारत केवल भारत के लिए नहीं है, भारत दुनिया का फूड बास्केट बने, इसके लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे।
1: पायल बहन, श्री नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला FAO के द्वारा दिया गया ये सम्मान जो है, इसी की जानकारी दे रहे थे श्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार।
2: और चलते चलते अपने सभी किसान भाई बहनों को सुनवाते हैं एक गीत लोकेंद्र द्वारा।
3: धरती

0: कल महीना भी हमारे भाई सुन रहे थे लोकेंद्र की आवाज़ में ये उपदेश, और अब घड़ी की सुई भी इशारा कर रही है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का। तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम राम।
0: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है कुछ गज़ल सुनने का, तो लीजिए सबसे पहले आनंद लीजिए इस प्यारी सी गज़ल का, जिसे स्वर से सजाया है पंकज उदास ने।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: तो अभी आप आनंद ले रहे थे पंकज उदास के गाए कुछ गजलों का। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 CM स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार राजधानी के सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 12 दिवसीय जनसंपर्क अभियान चला रही है। इस अभियान के 6ठे दिन आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल संवाद किया। एक रिपोर्ट।
4: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री आशीष सूद ने कहा कि संवाद के दौरान उन्होंने आधुनिक कक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, ICT लैब्स, विद्यालयों की सुरक्षा, विद्यालयों के मानसिक स्वास्थ्य और CBSE के पैमानों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही नवाचार आधारित गतिविधियां, शून्य अपशिष्ट अभियान, नशा विरोधी जागरूकता, बेहतर आधारभूत संरचना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर भी बल दिया गया। इस जनसंपर्क अभियान का नेतृत्व शिक्षा मंत्री आशीष सूद और शिक्षा निदेशालय कर रहे हैं। इसका देशीय राजधानी के स्कूलों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल माध्यम से सीधे संवाद कर सरकारी स्कूलों के कामकाज को बेहतर बनाना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
3: दिल्ली मेट्रो की सेवाएं रविवार को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर पिंक लाइन, मैजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सेवाएं 1 घंटे पूर्व शुरू की जाएंगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने आज भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस बैठक का लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीयकरण, सांस्कृतिक जुड़ाव और विद्यार्थियों तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए संस्थागत सहयोग को बेहतर करना था। एक रिपोर्ट।
5: बैठक के दौरान दोनों संस्थानों ने दिल्ली विश्वविद्यालय में अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों को आकर्षित करने की रणनीतियों पर चर्चा की। साथ ही विश्वविद्यालय को वैश्विक शैक्षणिक केंद्र के रूप में स्थापित करने के तरीकों पर विचार किया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और सहयोगात्मक पहलुओं पर भी बात हुई। चर्चा के दौरान सांस्कृतिक कूटनीति और छात्रों के कल्याण के महत्व पर भी बल दिया गया। इस संबंध में दोनों पक्ष विदेशी छात्रों के लिए योग सत्र शुरू करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही भारतीय नृत्य और संगीत के सत्र भी आयोजित करने पर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कल्याणकारी परंपराओं से गहराई से परिचित कराना है। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
3: दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 CM स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के समक्ष संबंधित अधिकारियों ने इस बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। इसमें विद्यालयों में मौजूद रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं की स्थिति, उनकी कमियां और उन्हें कार्यशील बनाने की कार्य योजना रखी गई।
1: इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में वर्षा जल संरक्षण को मजबूत करना, भूजल स्तर सुधारना और छात्रों तथा समाज में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूलों में वर्षा जल संचयन के लिए गैर सरकारी संगठन एहसास प्रणाली को अपनाया जाएगा, जिसे दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 में स्वीकृति दी गई थी। इसके माध्यम से छतों से आने वाले वर्षा जल को फिल्टर कर स्टोरेज व बोरवेल से जोड़ा जाएगा, जिससे भूजल स्तर में सुधार होगा और सूखे बोरवेल को भी पुनर्जीवित करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच के दौरान कई कमियां पाई गईं, जिसे दिल्ली सरकार ने दूर करने के लिए विस्तृत सुधारात्मक कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत वर्षा जल पाइपों को उचित चैनलों से जोड़ा जाएगा, जल निकासी मार्गों की नियमित सफाई होगी। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य के साथ शिवांग मिश्रा।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं, ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि 13 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद राजधानी में बड़े स्तर पर नए राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया 15 मई से दोबारा शुरू कर दी गई है। दिल्ली सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने ये जानकारी दी। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंत्योदय संकल्प को आधार बनाकर ये सुनिश्चित कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड और परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा चुके हैं।
4: 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं जरूर इस बात का जिक्र करना चाहूंगी कि हमने पूरी की पूरी राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया है।
3: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने कार्यभार संभालने के बाद राशन वितरण व्यवस्था का व्यापक ऑडिट कराया है। उन्होंने कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई हैं और जांच में लगभग 7 लाख अपात्र और फर्जी लाभार्थी पाए गए हैं।
4: 1,44,000 लोग ऐसे थे जो कि इनकम क्राइटेरिया के ऊपर थे। 35,800 लोग ऐसे थे जो कि राशन उन्होंने एक साल से लिया ही नहीं, पर उनके नाम के राशन कार्ड लगातार चलते जा रहे।
3: उन्होंने बताया कि राशन दुकानों पर पारंपरिक वजन मशीनों की जगह ई वेइंग मशीनें लगाई जा रही हैं और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य किया गया है।
4: राशन दुकान में जो कांटे हैं उसे हमने ई वेइंग मशीन में कन्वर्ट किया है, ई बायोमेट्रिक मशीन में कन्वर्ट किया जो कि पूरी तरीके से अटैच है राशन कार्ड के साथ।
3: उन्होंने जानकारी दी कि अब नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड के लिए आवेदन करते समय परिवार को आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, नवीनतम आय प्रमाण पत्र और परिवार के सभी सदस्यों का आधार विवरण जमा करना होगा। इससे पात्रता की सही जांच हो सकेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा। साथ ही इनमें पारदर्शी और त्रिस्तरीय सत्यापन प्रक्रिया भी इनमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए अनिवार्य वार्षिक पारिवारिक आय सीमा 1,00,000 रुपए से बढ़ाकर 1,20,000 रुपए कर दी गई है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली विधानसभा की कार्यप्रणाली, गौरवशाली संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को निकट से समझने के लिए आज परंपरा लेखन समिति प्रबंधक के समूह ने परिसर का भ्रमण किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने समूह से संवाद कर लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका, विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी दी।
5: हमारी जड़ें इतनी गहरी हैं कि हम गौरव करते हैं अपने अतीत पर और उससे प्रेरणा लेकर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो आज के दिन बहुत ही एक एकेडमिक डे है दिल्ली विधानसभा में, जो सब लोगों से यहाँ पे एक परिचर्चा हुई है और इतिहास के बारे में यहाँ पर उनको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, कॉफी टेबल बुक का सबने अवलोकन किया और सदन के पटल पर जाकर वहाँ भी सदन का अवलोकन किया। तो ये एक बहुत ही सुंदर अवसर।

राजधानी के देवली विधानसभा तिगड़ी क्षेत्र के पार्कों के सौंदर्यीकरण और सड़कों के निर्माण के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विकास निधि से लगभग 1,61,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह भिदूड़ी ने ये जानकारी साझा की है। श्री भिदूड़ी ने बताया कि इन विकास कार्यों का शुभारंभ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रविवार को करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कल से नमो भारत की 8 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। इसके तहत सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच और शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच सराय काले खां से मेरठ साउथ एक्स स्टेशनों के बीच ये सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही ये अतिरिक्त सेवा प्रदान करने के लिए 2 और ट्रेनें कॉरिडोर पर चलाई जाएंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सक्रिय मादक पदार्थों के एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बताया है कि तस्करों के पास से लगभग 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए गए। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 25,00,000 रुपए आकी गई है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 3 मुख्य तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक स्कूटी भी बरामद की गई है। पुलिस ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वो सतर्क रहें और अपने आसपास नशीले पदार्थों की तस्करी या सेवन से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देकर नशे के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दें। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में ई सिगरेट की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 120 करोड़ रुपए की 3,00,000 इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जब्त की है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि ये प्रतिबंधित ई सिगरेट चीन से मंगवाई गई थी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम प्रतिबंधित हैं। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा ने कहा है कि पशुओं की तस्करी, अवैध कुर्बानी और पशुओं के प्रति किसी भी प्रकार की क्रूरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री मिश्रा ने आज आगामी बकरीद के मद्देनजर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। श्री मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बकरीद के दौरान केवल अधिकृत और निर्धारित स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी जाए। साथ ही गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की हत्या या कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध का पालन सुनिश्चित किया जाए। श्री कपिल मिश्रा ने निर्देश दिए कि सड़कों, गलियों या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कुर्बानी ना हो। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री भी पूर्णतः गैर कानूनी है। उन्होंने इस प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने और ऐसी कोई भी शिकायत मिलने पर इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवंशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवंशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। ये पहल निदान, परामर्श, रोकथाम, प्रशिक्षण और जन स्वास्थ्य जागरूकता को समाहित करते हुए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से आनुवंशिक विकारों से निपटने का भारत का पहला व्यापक राष्ट्रीय प्रयास है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में फील्ड अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान ये जानकारी सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में हुई आग लगने की कई घटनाओं की शुरुआती जांच में असामाजिक तत्व शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल RPF इनकी सक्रियता से जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी विशेष दिया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। इस वर्ष की यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रों के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। प्रत्येक जत्थे में 50-50 यात्री रहेंगे। दोनों मार्गों पर वाहन से जा सकते हैं और ट्रैकिंग का रास्ता भी बहुत कम है। यात्रा मार्ग और जत्थे का ब्यौरा यात्रा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि स्कूल प्रबंधन समिति दिशा निर्देश 2026 निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि इन संस्थानों को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार या स्थानीय प्राधिकरण से कोई अनुदान प्राप्त नहीं होता है। राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम

तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल भी राजधानी में लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं कल का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने 12 दिवसीय संपर्क अभियान शुरू किया। दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सिविल सेवा परीक्षा के मद्देनजर रविवार को पिंक लाइन, मजेंटा लाइन और ग्रे लाइन पर प्रातः 6 बजे से शुरू होगी। दिल्ली सरकार बारिश के मौसम से पहले 75 सीएमश्री स्कूलों में करीब 50 करोड़ लीटर क्षमता वाले रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विकसित करेगी। और दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 195 ग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत मालिका, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कुछ प्यारे से गीत। और आज मैं आपके साथ हूँ, आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। तो आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: श्रोताओं, अभी आपने सुना शोला और शबनम से ये गीत, जिसे आवाजें दी थी शब्बीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति ने। लीजिए, आप सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन। वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
1: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
2: हर लेन देन अब है आसान।
3: साथियों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म खुदा गवाह से, मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति द्वारा गाया था। दोस्तों, अगला गीत सुनवाने से पहले कुछ दो लाइन आपसे कहना चाहती हूँ। अगर दिल में रखो तो दिल से रखो, वरना दिल रखने के लिए

0: दोस्तों, अभी आपने जो गीत सुना वो था फिल्म दलाल से कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फूल और कांटे फिल्म से कुमार सानू की आवाज़ में ये गीत। साथियों, आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती।

दोस्तों, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता।

दोस्तों, इसी गीत के साथ आज का गीत मालिका कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मुझे यानी आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए, आप सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और LPG के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच जारी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
3: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
1: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक

0: नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
1: अमेरिका एंड इंडिया,
2: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो ऐसे अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
1: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच अदर।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। एफकैट 1 ऑफ 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या fcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुशील शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लायन होजमार्क कजल्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं असलम बेग। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निज़ाम को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिरखा सप्लाई मौजूद है। मरकज ने इबोला से मुतासरा मुल्कों से आने वाले और वहां से गुजर कर आने वाले मुसाफिरों के लिए सेहत से मुतालिक एडवाइजरी जारी की है। भारत अफ्रीका फोरम समिट मुलतवी कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल गर्मी की सख्त सूरत हाल से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर और BJP लीडर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद शराकत दार के तौर पर देख रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के 5 मुल्कों के दौरे पर नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि यह दौरा समाज के हर तबके के लिए फायदों की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम का दौरा इस बात का मजहर है कि भारत आलमी मंजरनामे पर मजबूती से खड़ा है। उन्होंने बताया कि सफर के दौरान 57 अहम माहदों पर दस्तखत किए गए, जिनमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर तक की सरमायाकारी का मुत्तहिदा अरब अमारात का वादा शामिल है। उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौर पर उनकी तौहीन-आमेज बयान के लिए उनकी नुक्ताचीनी की। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा है कि भारत और अमेरिका फितरी शराकत दार के तौर पर काम कर रहे हैं और कई शोबों में एक दूसरे की तकमील कर रहे हैं, जिनमें टेक्नोलॉजी इख्तिरात, इंतहाई दकीक नौयत के दिफा, डिजिटल डाटा मराकज, क्वांटम कंप्यूटिंग और तिब्बी आलात शामिल हैं। नई दिल्ली में अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सालाना लीडरशिप समिट से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी बाहमी एतमाद और मुश्तरका इक्तसादी मफादात के सबब मुस्तहकम हुई है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत आलमी कंपनियों के लिए एक भरोसेमंद फ्रेमवर्क मुहैया करता है और इसमें आला पैमाना, सलाहियत और मार्केट के मौके शामिल हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन को मुस्तहकम करने के सिलसिले में MSME के रोल को उजागर किया। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने फील्ड अफसरान के साथ नई दिल्ली में आज एक आला सतह की सिक्योरिटी के जायजे से मुतालिक मीटिंग की। मीटिंग के दौरान ये बात सामने आई कि रेलगाड़ियों में हाल ही में आग लगने के कई वाकयात की इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि इसमें समाज दुश्मन अनासिर शामिल थे। वजारत ने बताया कि इन वाकयात को इंतहाई संजीदगी से लिया गया है और रेलवे की तहफुजाती फोर्स पूरी सरगर्मी के साथ इसकी छानबीन कर रही है। टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निज़ाम को बढ़ाने, पूरे रेलवे नेटवर्क में CCTV कवरेज को वसत देने और सिक्योरिटी कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है। हुकूमत ने आज एक बार फिर यकीन दिलाया है कि भारत में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की भरपूर सप्लाई है और रिफाइनरीज मांग पूरा करने के लिए अपनी ज्यादा से ज्यादा सलाहियत का इस्तेमाल कर रही हैं। LPG की पैदावार में इजाफा हुआ है और रिफाइनरीज में रोजाना तकरीबन 46 से 47 हज़ार टन LPG तैयार की जा रही है। नई दिल्ली में मगरबी एशिया की सूरत हाल पर बैन वजारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि सप्लाई मुस्तहकम है और सभी पेट्रोल पंपों पर दस्तयाबी को यकीनी बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं।
1: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में LPG प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हज़ार टन LPG देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: रसोई के मकसद के लिए LPG की सप्लाई मुस्तहकम है और

0: पिछले 3 दिन में 1,34,00,000 घरेलू LPG सिलेंडर फराहम किए गए हैं। सेहत खिदमात के डायरेक्टोरेट जनरल ने मुतासर मुल्कों से आने वाले या वहां से गुजरकर आने वाले मुसाफिरों के लिए इबोला बीमारी के मुतालिक एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के मुताबिक वो मुसाफिर जिन्होंने ज़्यादा खतरे वाले मुल्कों जिनमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और जनूबी सूडान शामिल हैं, इनका सफ़र किया है और जिन्हें बुखार, सरदर्द, आसाब में जकड़न, बगैर किसी वजह के खून बहने और कह आने और निगलने में परेशानी का सामना है, तो उनसे जोर देकर कहा जाता है कि वो फौरन तिब्बी अमले से रुजू करें। एक रिपोर्ट।
1: हुकूमत ने कहा है कि तस्दीकशुदा इबोला मरीजों या मुश्तबा मरीजों से खून लेने के सबब बराह रास्त रबते में आए मुसाफिर इमिग्रेशन क्लियरेंस से कबल हवाई अड्डे की सेहत ऑफिसर या हेल्थ डेस्क से फौरन रुजू करें। हुकाम ने मजीद कहा है कि किसी मुसाफिर के अपनी आमद के 21 दिन के अंदर ऐसी किसी बीमारी के आसार पैदा होते हैं तो उसे फौरन तिब्बी मदद तलब करनी चाहिए और अपने पिछले सफ़र के मुतालिक हिफ्जान सेहत के अहलकारों को खबर देनी चाहिए। मुसाफिरों को मशवरा दिया जाता है कि वो सेहत से मुतालिक बैन अक्वामी जाब्तों पर अमल आवरी और तहफ्फुज को यकीनी बनाने की गरज से सेहत जांच और अवामी सेहत के इकदामात के सिलसिले में ताउन करें। दिल्ली से दीपेंद्र और अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: आलमी सेहत तंजीम का कहना है कि 21 मई तक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और युगांडा में इबोला की एक अनोखी किस्म बुंदी बोगियों से मुतालिक 650 मुश्तबा मामलात का पता चला है, जिसमें 144 अमवात भी शामिल हैं। इतवार को आलमी सेहत तंजीम ने इसे बैन अलाक्वामी तशबीश की एक अवामी सेहत इमरजेंसी करार दिया था, अलबत्ता उसने कहा था कि ये वबाई सतह पर नहीं है। सेहत की इस सूरत हाल के पेश नज़र भारत अफ्रीका फोरम समिट, जो इस माह की 28 तारीख को नई दिल्ली में शुरू होना थे, मुलतवी कर दिया गया है। इससे कबल आज ही भारतीय हुकूमत ने अफ्रीका में रहने वाले, सफ़र पर जाने वाले या अफ्रीकी मुल्कों से वापस आने वाले इबोला वायरस से मुतासर लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी। अब तक भारत में किसी मामले की कोई इत्तला नहीं है। ज़िरात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा है कि भारत ने ज़रई पैदावार में इजाफा करके गजा की फराहमी को यकीनी बनाने के अमल को मुस्तकम करने और लाखों की किसानों की ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियां लाकर दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश किया है। रोम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को गजा और ज़रई तंजीम FAO एग्रीकोला मेडल से नवाजे जाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि ये एजाज नए भारत के बढ़ते हुए वकार की एक अलामत है।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भुखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: चौथा भारत अफ्रीका फोरम समिट, जो इस माह की 28 तारीख से 31 तारीख तक नई दिल्ली में मुनक़द होना था, अफ्रीका के कुछ हिस्सों में सेहत की सूरत हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया है। वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा है कि भारत अफ्रीकी यूनियन के सदर नशीं और अफ्रीकी यूनियन कमीशन के दरमियान मुशावरत की गई, जिसमें समिट और उससे वाबस्ता सरगर्मियों को मुनक़द करने पर गौर खोज किया गया, जिसमें अफ्रीकी लीडरों और तरफेन की मुकम्मल शराकत दारी और शमूलियत को यकीनी बनाने की अहमियत का एतराफ़ किया गया। इस सलाह मशवरे के बाद दोनों फरीकैन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि चौथा भारत अफ्रीकी फोरम समिट बाद की किसी तारीख पर तलब करना ज़्यादा मुनासिब होगा। समिट और इससे वाबस्ता मीटिंगों की नई तारीख बाहमी मुशावरत से तय की जाएगी और जल्द ही इस सिलसिले में ऐलान किया जाएगा। भारत ने अफ्रीका के अवाम और वहाँ की सरकारों के साथ अपनी यकजहती का इजहार किया है और कहा है कि वो अफ्रीका की CDC की क़्यादत वाली कोशिशों में तआवुन के लिए तैयार है, जिनका मकसद सेहत की मौजूदा सूरत हाल से निमटना है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। भारत ने दहशतगर्दी की तमाम शक्लों, खसूसन सरहद पार की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुत्तहिदा आलमी कोशिशों पर जोर दिया है। नई दिल्ली में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए मगरबी खित्तों के खारिजी उमूर की वजारत के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने जोर देकर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उनकी हिमायत करने वालों को जवाबदेह ठहराने की ज़रूरत है।

0: सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से तश्वीश का इजहार करते हुए MEA के सेक्रेटरी ने दहशतगर्द ग्रुपों की हिमायत करने और उनको पनाह देने वालों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप के 11वें सालाना इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने दहशतगर्दी की माली एयानत, इंतहा पसंदी और दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से उभरती हुई टेक्नोलॉजीज के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए मजबूत बैन अल-अक़वामी तआवुन की अपील की। भारत ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के इजलास में नस्ल कुशी वाले पाकिस्तान के तवील दागदार रिकॉर्ड को उजागर किया है। मुसल्ला महाज़राई में आम शहरियों के तहफ़ुज़ के बारे में सलामती कौंसिल के सालाना खुले मुबाहिसे में इजहार ख्याल करते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदा हरीश प्रवर्तन ने कहा कि गुज़श्ता दहाइयों के दौरान पाकिस्तान के गैर इंसानी तर्ज अमल से उसकी सरहदों और इससे बाहर भी तशद्दुद की हरकतों के जरिए दाखिली नाकामियों का रुख बाहर की जानिब मुड़ने की उसकी कोशिशों की अक्कासी होती है। उन्होंने ये भी कहा कि यह सितम ज़रीफ़ी की बात है कि पाकिस्तान ने जिसका नस्ल कुशी की हरकतों का तवील दागदार रिकॉर्ड रहा है उन मामलात का हवाला देने की कोशिश की है जो कुल्ली तौर पर भारत के दाखिली मामलात हैं। जनाब हरीश ने यह रायजनी उस वक्त की जब पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मामला उठाया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के स्कूल तलबा के एक वफद ने आज उपराष्ट्रपति भवन में नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन से मुलाकात की। नायब सदर जमहूरिया ने सरकारी स्कूलों के गरीब और पसमानदा तबके के तलबा को एक तालीमी दौरे पर दिल्ली लाने के कदम को सराहते हुए कहा कि इस तरह के दौरों से तलबा क्लासरूम से हटकर काफ़ी कुछ सीखेंगे और उनके नज़रियात में वसत पैदा होगी। नायब सदर जमहूरिया ने अपनी बातचीत में तलबा को मशवरा दिया कि वो अपने मौजूदा माली हालात की वजह से हिम्मत न हारें। उन्होंने ये भी कहा कि तालीम से वो अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अहल बनेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 16वीं आसाम कानून साज असेंबली का स्पीकर मंतखब होने पर रंजीत कुमार दास को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि जनाब दास का कानून साजी का वसी तजर्बा और अवामी खिदमत के लिए गैर मुतजलजल अज़्म असेंबली के वक़ार और जमहूरी रिवायात को मजबूत करेगा। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए शदीद से शदीद तरीन गर्म लहर की सूरत हाल के बारे में रेड अलर्ट किया है। इस तरह की सूरत हाल इस हफ्ते जारी रहेगी। इसी तरह के हालात दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और साहिली आंध्र प्रदेश में भी रहने का इम्कान है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से इख्तितामी हफ्ता तक गर्म लहर की सूरत हाल रहने के बारे में पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आइंदा 2 से 3 दिन तक गर्म और मरतूब मौसम रहने की भी पेशगोई की है। IMD ने कहा है कि सब हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में इतवार तक शदीद से शदीद तरीन बारिश होने की तवक्को है। महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कल तक गरज चमक और झालाबारी के साथ तूफान की पेशगोई की है। इसी दौरान IMD ने अंडमान निकोबार जजायर, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, साहिल कर्नाटक, कोंकण, गोवा और शिमाल मशरक़ी खत्ते में आइंदा 2 दिनों तक बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ गरज चमक के बारे में भी पेशगोई की है। ईशानी यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडोलाइस ने आज मुंबई में कौमी स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया और घंटी बजाने की रिवायती तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में कलीदी खुतबा देते हुए उन्होंने एक बार फिर कहा कि कुब्रुस भारत और यूरोप के दरमियान एक कुदरती राहदारी है, नीज़ वो वसी तर मशरक़ी बहरे अरब और मशरक़ वस्ता के दरमियान एक राहदारी है जो उमंग, इख्तरा और मुस्तकबिल पर मरकूज खाके के साथ सियासी और इक्तसादी इस्तेहकाम फराहम करती है। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात की वजारत कल अच्छी कारकर्दगी वाली निगहदाश्त मईशत तख्लीक देने के एक वर्चुअल प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। वजारत ने बताया कि इस तकरीब की अहम सरगर्मी मुअम्मर शहरियों के लिए जीवन ऐप और मुअम्मर अफराद की निगहदाश्त वाले करने वालों के बारे में जानकारी के शतायु डैशबोर्ड का आगाज़ करेगी। IPL क्रिकेट में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी एक मैच में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया है। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की तरफ से सुदर्शन ने 53 गेंदों में शानदार 84 रन बनाए। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर।

और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का 5 मुल्कों का दौरा समाज के हर तबके के लिए फवाइद की गारंटी देता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर देख रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने टेक्नोलॉजी से चलने वाले सिक्योरिटी निजामों को बढ़ाने और सिक्योरिटी की कार्रवाई को बेहतर बनाने पर जोर दिया है। हुकूमत ने एक बार फिर कहा है कि मुल्क में खाम तेल, पेट्रोल, डीजल, कुदरती गैस और LPG की खातिर खास सप्लाई मौजूद है।

0: मेरे दिल में तो सिर्फ प्यार ही प्यार है, चारों तरफ दूर दूर तक। एक दिन वो सारा प्यार एक जगह सिमट कर इकट्ठा हो गया। मैंने पास जाकर गौर से जो देखा तो वो तुम थी।
1: ये तुम बिल्कुल सच कह रहे हो?
0: सच, सिर्फ सच, सच के सिवा कुछ नहीं।
1: तब ठीक है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अल बद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। तीन भारतीयों सहित 274 पर्वतारोहियों ने नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर एक दिन में सबसे अधिक बार चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कीर्तिमान बनाने वाली टीम में शामिल तीन भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनुरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं। नेपाल के कामी रीता शेरबा ने भी एक नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर अपना ही कीर्तिमान तोड़ दिया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी स्थिति पूरे हफ्ते बनी रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors, including technology innovation, high-precision defense, digital data centers, quantum computing, and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said that the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interests. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent, and market opportunity.
2: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। सुनते हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पुराने यानी हमेशा की तरह यादगार फिल्मों से प्यारे प्यारे गीत, जो कि होंगे ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। गोल्डन एरा के ये खूबसूरत गीत में हमने सबसे पहले शामिल किया है आशा भोसले की आवाज़ में इस खूबसूरत गीत को, जो कि है फिल्म साहेब बीबी और गुलाम सी।

और अगला गीत जो हमने चुना है वो है फिल्म उमराव जान से, एक बार फिर आवाज़ आशा भोसले की, और बहुत ही प्यारा गीत है ये, चलिए सुनते हैं।

और अगला गीत सुनते हैं मुकेश की आवाज़ में, फिल्म जल बिन मछली नित्य बिन बिजली, संगीत से सजाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और बोल है मशरूम की।

0: इसी खूबसूरत गीत के साथ ही कि सुनहरे कार्यक्रम यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। कुछ ही पलों में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 to 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर भी बल दिया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अल बद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाईं। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच 8वां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। बैठक में समुद्री डकैती, समुद्री आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मछली पकड़ने जैसी गैर कानूनी समुद्री गतिविधियों से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। शीर्ष दो में बने रहने के लिए यह मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 89 रन से हरा दिया। गुजरात के 230 रन के लक्ष्य को चेन्नई की टीम 140 रन पर ही सिमट गई। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trust.

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। 3 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति

0: श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी के प्रमुख होते हैं। एसपीजी के अधीन प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। भारत और फ्रांस के बीच आठवां समुद्री सहयोग संवाद कल पेरिस में आयोजित किया गया। बैठक की सह अध्यक्षता भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पवन कपूर तथा फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने की। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। भारत और फ्रांस ने स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी साझा प्रतिबद्धता दोहराई। दिल्ली में अगले महीने की पहली तारीख को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन फिलहाल टाल दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी आगे की तारीख पर आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां कल अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुंदेलखंड के ज्यादातर इलाकों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं अहमदाबाद में कल हुए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Ashish Abraham. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal yesterday said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on PM Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the PM's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against PM Modi. He said that due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later, in a different program,

ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 3:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त है कार्यक्रम गीतों और गजलों का और आज के गीत गजल के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ आनंद लीजिए इस कार्यक्रम में खूबसूरत गीतों के साथ साथ बेहतरीन गजलों का। कार्यक्रम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर की आवाज के साथ।

0: वसीम बरेलवी जी ने क्या खूब कहा है कि रात तो वक्त की पाबंद है, रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है चराओं का सफर कितना है। शुदा आप सुन रहे हैं गीत और गजलों का कार्यक्रम अपनी दोस्त सरिता के साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: आपका एक बार फिर स्वागत है गीतों और गजलों के कार्यक्रम में। रात आकर गुजर भी जाती है, रात आकर गुजर भी जाती है, एक हमारी सहर नहीं होती।

जिंदगी की उलझनों में एक सुकून सा तुम हो। जिंदगी की उलझनों में एक सुकून सा तुम हो। मेरे हर दर्द का एक प्यारा सा मरहम तुम हो। साथ छूटे न कभी जिंदगी के सफर में साथी।

हाथों में हाथ थाम कर यूं ही चलते रहें, हाथों में हाथ थाम कर यूं ही चलते रहें, तुम मेरे हम सफ़र बनकर हर पल मुस्कुराती रहे। न कोई फ़िक्र हो राहों की, न मंजिल की कोई चाहत, न कोई फ़िक्र हो राहों की, न मंजिल की कोई चाहत, बस सफ़र में यूं ही तुम्हारी बाहों का बसेरा रहे।

यारों कुछ तो जिक्र करो उस कयामत बाहों का, यारों कुछ तो जिक्र करो उसकी कयामत बाहों का। वो जो सिमटते होंगे उनमें वो तो मर ही जाते होंगे। जी हाँ दोस्तों, और फिलहाल हम भी आपके साथ जुड़े हुए गीतों की और इस गज़लों के कार्यक्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिसे सुनते हैं पंकज उदास की आवाज़ में अगली नज़्म।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे गीतों और गज़लों का आरे से खूबसूरत से गीत के साथ। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाज़त। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं और ये वक्त होता है कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म का। आज के नाद ब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री सिक्किल माला चंद्रशेखर का बांसुरी वादन। आपके साथ घटम पर हैं बी पद्मनाभन। त्यागराजा की रचना है। नीचे सुनते हैं सुश्री सिक्किल माला चंद्रशेखरन का राग कंबोजी में बांसुरी वादन।

अभी आप सुन रहे थे कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म। इस कार्यक्रम में आज आपने सुना सुश्री सिक्किलमाला चंद्रशेखर का बांसुरी वादन।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पहली तिथि, तदनुसार 22 मई 2026। सुबह के 4:56 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं, माफ कीजिए,

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें।

आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे शोल्डर मूवमेंट, कंधे के आसन और ताड़ासन के बारे में। 5:20 का वक्त रहेगा देशभक्ति संगीत के कार्यक्रम का। प्रातः 5:30 पर आप सुन सकते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन सकते हैं प्रातः 6:10 पर। प्रातः 6:40 का वक्त रहेगा कार्यक्रम चिंतन का। आज के चिंतन के कार्यक्रम में आप सुनेंगे तुलसी के राम। प्रातः 6:45 का वक्त है श्री रामचरितमानस से पाठ का। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 63।

कहते 7:10 का वक्त है संगीतिका का। 7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का। 8:45 से आप आनंद उठाएंगे कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। कार्यक्रम का नाम है स्वर गंगा। गांधी चर्चा का वक्त रहेगा प्रातः 9:15। 9:30 पर पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10:00 आप आनंद ले सकते हैं। 10:10 पर आप आनंद ले सकते हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी पसंद का।

0: श्रोताओं, ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस कल नई दिल्ली पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइडिस मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉ कॉन्स्टेंटिनोस कॉम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री एलेक्सिस वाफियाडिस, वरिष्ठ अधिकारी और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी साथ है। राष्ट्रपति बनने के बाद श्री निकोस की ये पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के बारे में नई दिल्ली में कल श्री गोयल ने कहा कि ये यात्रा समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारे

0: हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने जांच दल को 25 जून तक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। परिवार ने आरोप लगाया था कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और तथ्यों को छिपाया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। दिल्ली में 1 जून को होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा है कि अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ विचार विमर्श के बाद चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को भी बाद में आयोजित करने का फैसला लिया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर हैं। लगातार पांचवें दिन बांदा देश का सबसे गर्म जिला रहा। वहां कल का अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अंक तालिका में बेंगलुरु पहले और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटन्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रातः 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं, आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे कंधे के मूवमेंट और ताड़ासन के बारे में।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी चौखन, आपके योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे शोल्डर जॉइंट्स प्रॉब्लम पर। शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही मोबाइल जॉइंट है और सबसे ज्यादा मूवमेंट इसी जॉइंट में पाई जाती है। इसकी मोबिलिटी के साथ साथ शोल्डर जॉइंट की स्टेबिलिटी का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसके लिए शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए हमें प्रतिदिन क्या जरूरी है, योग करना जरूरी है। शोल्डर जॉइंट की समस्या जैसे शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर और बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में भी शोल्डर प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। शोल्डर जॉइंट की सर्जरी होने के बाद भी शोल्डर जॉइंट मूवमेंट में कई बार रुकावट आ जाती है।

इन समस्याओं से निदान पाने के लिए आप योग में शोल्डर जॉइंट के लिए सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। आज मैं आपको एक सूक्ष्म क्रिया का अभ्यास बताऊंगी। उसके लिए सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं। बाएं हाथ की उंगलियों को बाएं कंधे पर और दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर रखें। श्वास छोड़ते हुए यानी ब्रीद आउट करते हुए दोनों कोहनियों को वक्षस्थल के सामने मिलाएं। अब श्वास भरते हुए यानी ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्र आकार घुमाएं। ब्रीद इन करते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर जाएं और ब्रीद आउट करते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। दोनों कोहनियों को चेस्ट रीजन के सामने स्पर्श करने की कोशिश करें। पीछे की ओर भी कोहनियों को खींच कर घुमाएं। इस प्रकार पूर्ण रूप से दोनों कोहनियों को पहले 4 से 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, यानी घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में भी 4 से 5 बार घुमाएं। श्वास भरते हुए दोनों कोहनियों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेकर आएं। इस योगिक क्रिया के अभ्यास में शोल्डर जॉइंट की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उसमें होने वाले रक्त संचालन भी बढ़ता है। अगर आप यह अभ्यास प्रतिदिन मॉर्निंग में करते हैं तो आपके शोल्डर जॉइंट हेल्दी रहता है और उसमें होने वाली रुकावट से भी छुटकारा पाया जा सकता है। तो आज हमने शोल्डर जॉइंट की मोबिलिटी को, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को, उसकी मांसपेशियों को आप किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकते हैं एक सिंपल छोटी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया के साथ, जिसको हम शोल्डर मूवमेंट्स कहते हैं। तो आज के लिए हमारी सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थी शोल्डर मूवमेंट्स। नमस्कार।

时间5:15到6:45和16:17:30向亚洲播送普通话节目。召见广播频率为15280千赫，晚间广播频率为15。